ए आकाशवाणी एफएम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ से प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी एफएम बठिंडा। आज दिन बुधवार शक संवत 1948 दे पादो महीने दी 2 तारीख ते ईसवी सन 2026 दे अगस्त महीने दी 26 तारीख है। ते हुण साडी अज दी प्रसारण सभा शुरू हुंदी है। असी इस सभा विच सारे ही स्रोतियां दा स्वागत करते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
1: आज दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपेनिये के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साई रमुज तबा।

अपना देश, हमारे अपने देश की गंगा जमनी तहजीब बड़ी खूबसूरत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपा सारे मिलके इत्थे रहने हैं। हर किसी दे त्योहार दे आपा सेलिब्रेट करते हैं, एक दूजे नूं मुबारकबाद देने हैं। ये खूबसूरती हमेशा अपनी कायम रहनी चाहिए है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि अपनी खूबसूरती कायम रहे, लेकिन आपा नूं अपना तन मन धन ला के इस खूबसूरती नूं कायम रखिए। तो जिड़ा अमन ते शांति का पैगाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिता है कि आपने इरशाद फरमाया है कि ना हक किसी एक इंसान का खून बहाना पूरी इंसानियत का कतल है। तो ये पैगाम नूं हमेशा याद रखना चाहिए है। आप खून किसी का ना बहाइए, बल्कि खून दे के किसी की जिंदगी बचाने वाले बन जाइए। अपने देश की सलामती वास्ते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिता कि देश की अपने मुल्क की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, तो अपने देश

प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। साडे जिन्हां श्रोतियां ने आए मेहमान नाल कोई गल सांझी करनी होवे तां ओह साडे स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते संपर्क कर सकदे ने। सो सुनना ना भुलना, मिति 27 अगस्त दिन वीरवार नूं दुपहर 12:10 ते प्रोग्राम मुश्किल दसो हल दसांगे।

प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। साडे जिन्हां श्रोतियां ने आए मेहमान नाल कोई गल सांझी करनी होवे तां ओह साडे स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते संपर्क कर सकदे ने। सो सुनना ना भुलना, मिति 27 अगस्त दिन वीरवार नूं दोपहर 12:10 ते प्रोग्राम मुश्किल दसो हल दसांगे।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले, नखरे ना कर।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते सही दोस्ती निभाओ ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी ले डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउण लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर

0: सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरल वासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिर ओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्य वर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
3: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया।

0: है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब $60 करोड़ के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग

0: जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलमवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at Pragati meeting. Union Home Minister Amit Shah sets 1-year deadline for 100% implementation of 3 new criminal laws. Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agreed to continue their work in seeking political settlement of boundary questions.

ਆਦਤ ਪੈ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਸਕਣ ਨਾ ਛੱਡ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਕਰ ਆਪਣਾ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। दिल तो बच्चा है जी, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। कुणाल गांजावाला की आवाज है, संजय छैल ने इसे लिखा है, प्रीतम का संगीत।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। 26 अगस्त एक ऐसी महान महिला का जन्मदिन जिन्होंने अपना पूरा जीवन इंसानियत की सेवा के नाम कर दिया। मदर टेरेसा, जिनका असली नाम था अग्नेस गोंझा बोयाजीजू, उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। भारत आकर उन्होंने गरीबों, बीमारों, अनाथों और बेसहारा लोगों की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया था। 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और मानवता के प्रति समर्पण के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए एक ऐसी महिला के रूप में जिन्होंने हमें यह सिखाया कि इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है किसी जरूरतमंद के काम आना, सुनते हैं ये गीत।

0: पुकार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे एआर रहमान का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। अलका याग्निक और साथियों के स्वरों में इश्क विश्क फिल्म का गीत, समीर का लिखा, अनु मलिक का संगीत।

श्रोताओं, आज है जाने माने फिल्मकार मधुर भंडारकर का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां देते हुए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आज के फनकार आज का कार्यक्रम ये केंद्रित रहने वाला है फिल्मकार मधुर भंडारकर पर। 9:30 पर और रात्रि पुनः आप सुन पाएंगे 9:30 पर। आलेख एवं स्वर अमरकांत दुबे का है, प्रस्तुति रमेश गोखले की, तो सुनना नहीं भूलिएगा। और गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हीरोइन फिल्म से बैनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाजें, नीलेश मिश्रा का लिखा गीत, सलीम सुलेमान का संगीत।

श्रोताओं, 26 अगस्त महिला समानता दिवस भी मनाया जाता है 26 अगस्त के दिन। क्या आप जानते हैं कि आज का दिन सिर्फ महिलाओं की उपलब्धियों को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि बराबरी के उस अधिकार को समझने का दिन है जिसकी लड़ाई महिलाओं ने वर्षों तक लड़ी। 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में 19वें संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को मतदान का संवैधानिक अधिकार मिला। लेकिन महिला समानता का मतलब सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब है शिक्षा, रोजगार, समान अवसर, समान सम्मान, सुरक्षा और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की आजादी। और भविष्य की बात करें तो असली समानता तब होगी जब किसी महिला को आगे बढ़ने के लिए अपने जेंडर की वजह से, लिंग की वजह से कोई अतिरिक्त बाधा ना झेलनी पड़े, क्योंकि बराबरी किसी एक दिन का उत्सव नहीं, हर दिन की सोच और व्यवहार का हिस्सा होनी चाहिए।

प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुश्छल की आवाज में। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा है और हिमेश रेशमिया का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार, हमारा आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मधुर भंडारकर के बारे में बहुत सी बातें हम उन्हीं से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बातें कर लें। जाहिर है ये बातें भी मधुर भंडारकर के बारे में ही होंगी। मुंबई में ही पले बढ़े मधुर अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक वीडियो लाइब्रेरी चलाया करते थे। जी हाँ, वहाँ भी वो फिल्मों से ही घिरे रहते थे। तो क्या मधुर, आपको फिल्मों का शौक बचपन से ही था?
1: बचपन से ऐसा था कि पिक्चर का बहुत शौक था, थिएटर में जाके पिक्चर देखना। और खास करके मुझे याद आता है कि हमारे वो टाइम पे रोड पे पिक्चर बहुत दिखाया करते थे, जैसे गणेश उत्सव होता था या गोविंदा या सत्यनारायण की पूजा होती थी, तो काफी पिक्चर देखी, हर टाइप की पिक्चर देखी, ब्लैक एंड व्हाइट देखी और अलग अलग प्रकार की पिक्चरें देखी। तो सिनेमा का एक जुड़ाव जब से रहा है हमेशा, बचपन में एक नॉर्मल था लेकिन फिल्म से काफी जुड़ाव था कि पिक्चर में जाके शूटिंग देखना, लोगों को मिलना। रोड पे जब पिक्चर देखते थे हम लोग, मुझे याद है कि जब पिक्चर देख रहे और बीच में कोई गाय आ जाती थी तो काफी भागम

एक वीडियो कैसेट लाइब्रेरी चलाता था। काफी साल मुझे उसमें, 4-5 साल मैंने स्ट्रगल किया। वीडियो कैसेट घर घर जाके पहुंचाता था। मैं खार में रहता था, तो वर्सोवा जुहू एरिया इलाके में जाके वीडियो कैसेट रहता था। कई फिल्म वालों को भी कैसेट दिया करता था मैं। तो वहां से, तो पहले से फिल्म का तो था शौक, लेकिन एक ऐसा हो गया कि जब वीडियो कैसेट देते देते फिल्म वालों से बहुत ही काफी करीब आ चुका था मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यहीं से मौका मिलना चाहिए मुझे। तो मैंने वीडियो कैसेट्स के बाद मैंने कुछ और जॉब्स किए बॉम्बे में, जैसे छोटे मोटे क्लैप देना, कंटिन्यूटी लिखना छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ। मेरी कोई एकदम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई बड़ा डायरेक्टर अपना असिस्टेंट रख लेगा। तो काफी एक सवा साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद मेरी मुलाकात मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी से हुई है। तो उनके साथ मैं जुड़ा रहा 91 से लेकर 95 तक। तो 5 साल का सफर उनके साथ जुड़ा रहा। तो काफी कुछ सीखने मिला। वो एक अलग टाइप के डायरेक्टर है, और काफी इनोवेटिव और क्रिएटिव किस्म के डायरेक्टर है। तो बहुत उनसे सीखने मिला, और वहां से एक जर्नी मेरी शुरू हुई है। क्योंकि जब पहली पिक्चर जब बनाने निकला

0: तो लोगों ने मुझे कहा कि आप कमर्शियल फिल्म बनाइए, क्योंकि ये जो कमर्शियल फिल्म चलती है, तो मैं जिस तरह की सब्जेक्ट्स और जिस तरह के आइडिया थे मेरे पास, तो कहीं लोगों ने बोला कि तुम बहुत ही इंटेलेक्चुअल सोचते हो और तुम बहुत ही श्याम बेनेगल गोविंद निहलानी टाइप सोचते हो, तुम आप
1: जी
0: कमर्शियल फिल्में बनाओ। तो मुझे लगा कि रंगीला पिक्चर में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था मिस्टर रामगोपाल
1: जी
0: वर्मा
1: जी
0: जी का, तो उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया। मुझे लगा कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी चाहिए, तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या अलग टाइप का सिनेमा मत बनाओ, क्योंकि जो पहली पिक्चर होनी चाहिए वो कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए। अगर कमर्शियल फिल्म चलेगी तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा दूसरे प्रकार की फिल्म बनाने का। तो मैंने शायद दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा लिया और सोचा, और इस सबसे मैंने एक कमर्शियल फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की जो दूसरों को पसंद था वो बनाया, जिसका नाम था त्रि शक्ति जो पिक्चर थी, जिसमें अरशद वारसी, मिलिंद गुनाजी, शरद कपूर थे। तो वो पिक्चर बनने में ही 2.5 साल लग गए, और बाय द टाइम रिलीज हुई उसको 3 साल के बाद पिक्चर रिलीज हुई। तो जब बॉक्स ऑफिस से पिक्चर लगी तो किसी के स्टेटस वहां पे नहीं थे, क्योंकि अरशद, शरद, मिलिंद गुनाजी तीनों के बॉक्स ऑफिस स्टेटस भी खत्म हो चुके थे। तो बड़े ही जद्दोजहद से वो पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन वो ऐसी पिक्चर थी जिसकी खबर भी नहीं छपी, वो आई और चली गई, पता नहीं
1: पता
0: चला
1: नहीं
0: किसी
1: चला।
0: को। तो मेरे माथे पे एक होता है वो लग गया कि फ्लॉप डायरेक्टर बोल के, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एक इंसान को फ्लॉप डायरेक्टर का जब टैग लगता है, खास करके आपकी पहली पिक्चर नहीं चले, और
1: जी
0: खास करके जो पिक्चर जिसमें कुछ स्टार कास्ट भी नहीं थे, जो बी ग्रेड फिल्म कहा जाता था, तो वहां से उठकर इस पोजिशन में पहुंचना बहुत संघर्ष करना पड़ा।

0: लेकिन आपकी अगली फिल्म चांदनी बार, जिसने न सिर्फ अपने झंडे गाड़े बल्कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिला दिया, उसका आइडिया आपको कैसे आया?
1: देखिए, त्रिशक्ति जब नहीं चलने के बाद एक डेढ़ साल ऐसा मेरी लाइफ में आया कि जहां पे मुझे लगा कि मैं क्या काम करूं, बोल के किस तरह की, मुझे एक ही लगा कि ये जो पिक्चर मैंने बनाई थी त्रिशक्ति, ये मेरी फिल्म नहीं थी, ये मेरे दिल से निकली हुई फिल्म नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने किसी और के हिसाब से फिल्म बनाई है, तो मुझे लगा कि एक फिल्म ऐसी बनानी चाहिए जिसमें मेरा काम नजर आए। तो इसी तरह से मैंने चांदनी बार का सब्जेक्ट, एक बार मेरा एक दोस्त था जो मुझे बार में ले गया, मुझे पता नहीं लेडीज बियर बार है, तो वहां ले गया और उसने बार को जब मैंने देखा, मुझे लगा यार ये कैसा कल्चर है, यहाँ पे लोग लड़कियां डांस कर रहे हैं और लोग पैसे फेंक रहे हैं, तो वहां से जो आइडिया जनरेट हुआ मेरे से, तो वहां से ही

0: मुझे लगा कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। तो बहुत लोगों को मैंने सब्जेक्ट सुनाया इसका, तो सब लोगों ने रिफ्यूज किया, बोला नहीं ये तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, या जिनको समझ में आया तो वो अश्लील बनाना चाहते थे। तो मैं अश्लील फिल्म नहीं बनाना चाहता था, मुझे लगा कि मैं अपने हिसाब से एक फिल्म बनाऊंगा बोल के, जिसके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी बोल के। तो तब जाके मैंने मिस्टर आर मोहन, जो मेरी पिक्चर गलती से त्रिशक्ति देखे हुए थे, तो उनको लगा कि मधुर ने ऐसा टेक्निकली काम अच्छा किया था पिक्चर में त्रिशक्ति में। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया चांदनी बार का, और उन्होंने बोला बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं तुम्हारे साथ फिल्म बनाऊंगा। फिर मैंने एक रिसर्च किया, 6 महीने के ऊपर रिसर्च किया, बार में जाके लोगों से मिलके, बार बालों से मिलकर, वेटर से मिलकर, कस्टमर से मिलकर, तो काफी एक रिसर्च करके 6-8 महीने में मैंने उसकी स्क्रिप्ट के राइटरों के साथ बैठकर उसको डाला, और उनको लगा कि पिक्चर में स्पार्क है और ये बन सकती है अच्छी पिक्चर। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मधुर मैं बनाऊंगा। और तब्बू जी उनके साथ काम कर चुकी थी सजाए कालापानी पिक्चर में, तो मैंने उनको बोला तब्बू अगर होगी तो अच्छा रहेगा पिक्चर में। तो मैं और आरमोन साहब तब्बू को जाके मिले और हमने उनको नरेट किया, और तब्बू को बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट आइडिया, और उसके बाद ये पिक्चर मुकम्मल हुई। मुझे लगा कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि मेरा दूसरा चांस था, अगर ये पिक्चर नहीं चलती तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता। और जब मैं चांदनी बार बना था 1999-2000 में, तो जब म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो बड़ी पीक पे थी, और बिना गाने के तो पिक्चर ही नहीं बनती थी, और आइटम गाना तो एकदम पीक पे था वो टाइम पे। तो लेकिन मैंने मेरे प्रोड्यूसर को कन्विंस किया कि मैं बोला इसमें मैं कोई गाना नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि इस पिक्चर से, गाना आने से पिक्चर का नरेशन जो है इसका बहुत ही कमजोर पड़ेगा। और मुझे लगा कि 6 महीने जो बार में रिसर्च किए, तो मैंने हमेशा फिल्मी गाने सुने थे, तो इतना जहन में था मेरा कि मुझे लगा कि रियलिस्टिक गाना होने में ही बेटर होगी, तो इस पिक्चर की जो मोल्डिंग है वो भी रियलिस्टिक लगेगी। तो इसलिए हमने कोई गाना या कोई आइटम सॉन्ग, अगर चांदनी बार मेरे ख्याल से ऐसी जगह थी जिसके अंदर आप 5 आइटम गाना भी डालते तो कम पड़ता, हर लड़की के आइटम गाने भी डांस कर रही, लेकिन मैंने रियलिस्टिक गाना रखा जो पिक्चर के पुराने जो गाने होते हैं जानबूझ के रखा, और एक जर्नी दिखाई थी 1985 से 2000 तक। तो मैंने उस हिसाब से ईयर वाइज ईयर मैंने दिखा कि गाने चेंज भी होते हैं, एम्बियंस चेंज होता है, सेट को रेनोवेट किया गया। तो हमने वो डिसीजन लिया, और मैं इस बारे में मेरे प्रोड्यूसर को भी सहयोग दूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस बारे में।
1: ये तो थी फिल्म चांदनी बार की बातें। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मधुर भंडारकर की फिल्म पेज 3 भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी गई। आपको भी अच्छी लगी थी ना ये फिल्म?

इस फिल्म पेज थ्री को बहुत ही रीजनेबल बजट में नए कलाकारों को लेकर बहुत ही कम समय में मधुर भंडारकर ने बना लिया। इससे जुड़ी कुछ बातें भी उनसे सुनेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि मधुर भंडारकर की एक और फिल्म थी आन, इसे भी डायरेक्ट उन्होंने ही किया था, लेकिन फिल्म के निर्माता फिरोज नडियाडवाला से उनके कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने तकरीबन कंप्लीशन पर ही ये फिल्म छोड़ दी, इसीलिए क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं है। बहरहाल आइए सुनते हैं फिल्म आन का गाना।

0: हाँ तो मधुर जी, अब पलटाइए पेज थ्री।
1: पेज थ्री एक ऐसी फिल्म थी कि लोगों ने लगा कि ये किस तरह की फिल्म है और पता नहीं लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एक पेज थ्री टाइटल ही बहुत ही अलग टाइटल था और पिक्चर में कोई फेस वैल्यू नहीं था। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर, हमारे टीम ने पूछा उसको, स्क्रीन प्ले डायलॉग में इसको ढहा भरा से और इस तरह से उसको हमने प्रेजेंट किया, तो उस बात की खुशी हुई कि पिक्चर चली बोल के। वो पेज थ्री का आइडिया आया था जब मैं कहीं पार्टीज में गया, जैसे पेज थ्री पार्टीज कहते हैं, और कहीं अलग अलग मुझे लगा कि अलग अलग प्रकार के लोग एक पार्टी में आते, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड से हो, फिल्म वर्ल्ड से, एड वर्ल्ड से हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, तो एक छत के नीचे आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि इस पे एक फिल्म बननी चाहिए। जब मैं ऑब्जर्व करता था, मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ जैसे लोग कहते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो मुझे लगा कि इस पे फिल्म बन सकती है। तो मुझे पहले लगा कि एक ओवरनाइट सब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें रात को पार्टी चालू होती सवेरे खत्म होती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतने कैरेक्टर्स एक रात में मैं नहीं दिखा पाऊंगा, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया था पिक्चर, कि ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे, कोई सोशलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे। मुझे फिर एक लगा कि जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अच्छा रहेगा, तो इसलिए एक जर्नलिस्ट ऐसी रखी जो नई है बीट पे और नई तरह से काम शुरू किया है, तो ज्यादा मंझी हुई नहीं है वो, तो उस तरह से उसकी जर्नी हमने दिखाई है। खास घटना तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ऐसे पेज थ्री में इंसिडेंट्स मैंने देखे पार्टी में कि किस तरह से सुपरफिशियल लोग, किस तरह से एक प्लास्टिक वर्ल्ड हम कहते हैं जैसे डिपिक्ट कहते हैं, कि वो आते हैं वहां पे, माने चेहरे के पीछे हर इंसान की कहानी होती है, हर इंसान का एक जज्बात होता है
2: जी।
1: तो मुझे लगा कि ये पिक्चर की स्टोरी अगर बताई जाए तो बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट था ये
2: जी।
1: लेकिन मुझे लगा कि रिस्क लेके लोगों ने, मुझे कहा चलो भाई तुम फिल्म बनाना चाहते हो ठीक है, लेकिन कम से कम टाइटल तो चेंज करो, ये पेज थ्री समझ में किसको आएगा। लोग कहीं लोगों ने कहा कि मर्डर मिस्ट्री है
2: जी।
1: कोई फ्लैट नंबर है, क्या है ये
2: जी।
1: समझ में नहीं आ रहा पिक्चर। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कि मैं उस टाइटल से सीमित था कि पेज थ्री होना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई भी एक पिक्चर चलती वो क्रेडिट पूरा डायरेक्टर को लेना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से पूरे टीम ने मेहनत की है, प्रोड्यूसर ने मेहनत की है, मेरे राइटरों ने मेहनत की है, म्यूजिक डायरेक्टर ने मेहनत की, राजू सिंह बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर बहुत अच्छा उसने किया, उसने मेहनत की, तो सब लोग ने की मेहनत।

दोस्तों, मधुर भंडारकर की बातों को सुनने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि उन्होंने फिल्मों में जो भी सब्जेक्ट रखे हैं, जो भी उठाए हैं, जो समस्याएं दिखाई हैं, वो सब उनकी जिंदगी के आसपास घटने वाली चीजों को ही उन्होंने फिल्मों में उतारा है। उन्होंने कहीं कहा है कि मैं समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। पेज थ्री उन्होंने बनाई सन 2005 में, कॉरपोरेट बनाई 2006 में, कॉरपोरेट वर्ल्ड को लेकर।

ट्रैफिक सिग्नल बनाई सन 2007 में, बहुत ही खूबसूरत फिल्म। 2008 में फैशन वर्ल्ड को लेकर उन्होंने एक रियलिस्टिक फिल्म दिखाने की कोशिश की, और फिर जेल की जिंदगी पर बनी सन 2009 में जेल। तो एक बहुत ही रियलिस्टिक कोशिश करते हैं मधुर भंडारकर अपनी फिल्मों के जरिए समाज को ये दिखाने की कि उसके आसपास, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये भी देख।

सामाजिक सरोकारों को देखकर, जानकर, महसूस करके उसे रुपहले पर्दे पर प्रस्तुत करने में माहिर मधुर भंडारकर की दो फिल्मों का जिक्र यहां जरूरी करना हो जाता है। एक तो दिल तो बच्चा है जी, इसी कड़ी में एक और फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं।

0: जब हम बात मधुर भंडारकर की कर रहे हैं तो ये जिक्र भी जरूरी है, यानी कहना चाहिए कि लीक से हटकर एक अलग सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने वाले इस निर्देशक की हीरोइन के बाद कौन सी फिल्म आई तो तुरंत नाम याद आता है, कैलेंडर गर्ल्स। इस प्रतिभावान निर्देशक को भारत सरकार ने भी सराहा, उनकी प्रतिभा को नवाजा पद्मश्री देकर सन 2016 में। तो दोस्तों, ये था फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम, रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। साडे जिन्हां श्रोतियां ने आए मेहमान नाल कोई गल सांझी करनी होवे तां ओह साडे स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते संपर्क कर सकदे ने। सो सुनना ना भुलना, मिति 27 अगस्त दिन वीरवार नूं दोपहर 12:10 ते प्रोग्राम मुश्किल दसो हल दसांगे।

0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
3: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।
4: आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, मिति 27 अगस्त दिन वीरवार नूं दोपहर 12:10 ते तुसी सुनोगे सिलसिला मुश्किल दसो हल दसांगे। ते इस वार साडे स्टूडियो दे विच मेहमान होणगे सरदार गुरविंदर सिंह मान, प्रेजिडेंट बार एसोसिएशन बठिंडा। मेजबान होणगे बलजीत शर्मा ते रजिंदर मान।

प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। साडे जिन्हां श्रोतियां ने आए मेहमान नाल कोई गल सांझी करनी होवे तां ओह साडे स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते संपर्क कर सकदे ने। सो सुनना ना भुलना, मिति 27 अगस्त दिन वीरवार नूं दोपहर 12:10 ते प्रोग्राम मुश्किल दसो हल दसांगे।

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदो।
1: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग
0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदो।
1: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग
0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदो। 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदो। 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदो।
2: श्रोतियो जाते जाते सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत जिसनों गाया है मुहम्मद सदीक ने ते लिखा है प्रोफेसर पूरन सिंह ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजना की समीक्षा की।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देशभर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल बीजिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय नौसेना नीस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। इसका निर्माण विशाखापट्टनम

के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार की सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत की असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे को भरने का संकेत नहीं देते हैं और स्थिति सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरलम में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम्मा भी मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी और ओणम की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से पराजित किया। वहीं फाइनल मैच में प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो के बीच मैच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। और देखिए दोस्तों, बॉलीवुड में ना बहुत अलग अलग तरह की चीजें होती रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमारे दिल को छू जाती हैं। अब देखिए, झमाझम बारिश का दौर जारी है और ऐसे में सिंगर अमित कुमार ने हाल में ही एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो किशोर दा का एक बेहद लोकप्रिय गीत रिमझिम गिरे सावन गा रहे हैं। और वो जिस तरह से गा रहे हैं ना अमित कुमार इस गीत को, तो उसे सुनकर एक पल के लिए हम सबको किशोर दा की याद जरूर आ जाती है। और इस सावन के मौसम में अमित कुमार ने ये जो प्यारा सा गीत गाया है ना, वो सचमुच हम सबके दिल को छू जाता है। तो चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं एफएम रेनबो पर ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

इतने प्यारे से गीत के साथ हम सभी खोते चले जाते हैं, है ना। और प्यारा सा मौसम है तो वाकई बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज का जो बॉलीवुड सरताज का सवाल है ना, वो भी इसी गीत पर आधारित है। और आज का सवाल ये है कि ये जो गीत है रिमझिम गिरे सावन, वो किस फिल्म का है। तो जल्दी से आप अपना उत्तर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर अपने नाम के साथ पहुंचा दीजिए। और जो दोस्त सबसे पहले सही उत्तर हम तक पहुंचाते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। तो जल्दी से आप अपना उत्तर हम तक पहुंचाइए, हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये है आपका FM रेनबो, दिल से दिल तक जुड़ा हुआ 24 घंटे आपके साथ, आपका साथी, आपका हम सफर।

जी इसी तरह से गुनगुनाते रहिए एफएम रेनबो के साथ। और आज बॉलीवुड में जन्मदिन है डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर प्रोड्यूसर मधुर भंडारकर का। एफएम रेनबो पर हम उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। 26 अगस्त 1968 को इनका जन्म हुआ मुंबई में, और यथार्थवादी और सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। मधुर भंडारकर चांदनी बार, पेज 3, ट्रैफिक सिग्नल, फैशन, कॉरपोरेट हीरोइन जैसे फिल्म्स बनाने के लिए जाने जाते हैं मधुर भंडारकर। और 2016 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही चांदनी बार, पेज 3, ट्रैफिक सिग्नल और फैशन जैसे फिल्मों के लिए इन्हें 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर मधुर भंडारकर को हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक, और ये गीत फैशन फिल्म से।

0: अरे अंजलि, अब क्या तुम मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
5: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
4: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
6: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
7: इग्नोर नहीं, याद करो।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
9: NCR EPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
10: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंग

0: तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर

0: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: वो सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी के FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेस। वैसे ब्रेक पर कुछ लंबे समय के लिए हम गए, खैर कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ। और आज बॉलीवुड सरताज का जो सवाल है ना, वो एक बहुत ही प्यारे से गीत के बारे में आपको बताना है। जो गीत हमने आपको सुनवाया था किशोरदा की आवाज में, वो गीत रिमझिम गिरे सावन किस फिल्म का है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी से बताइए। और बहुत सारे श्रोता जो हैं वो बता रहे हैं, तो आप लोग भी जुड़ जाइए FM रेनबो के साथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही दिल से। और आप अपना उत्तर हम तक पहुंचाइए, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। और जो सबसे पहले सही उत्तर हम तक पहुंचाएंगे ना, वो बन जाएंगे हमारे बॉलीवुड सरताज। तो बनिए जल्दी से बॉलीवुड सरताज, क्या पता आज आप बन जाएं हमारे बॉलीवुड सरताज।

0: अप।
1: वेकअप। और देखिए, कई बार गीत के साथ हम इस तरह से खो जाते हैं कि ध्यान ही नहीं रहता कि क्या कहें और क्या ना कहें। वैसे एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म जो है ना, वो आने वाली है, और एक बच्ची को बचाने के लिए माँ किस हद तक जा सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है तापसी पन्नू की आने वाली फिल्म गांधारी की, और इसी सवाल का जवाब देंगी वो एक्शन, इमोशन और रहस्य के साथ। फिल्म का जो ट्रेलर है वो मंगलवार को यानी कल 25 अगस्त को रिलीज हो गया है, और इसमें तापसी एक ऐसी माँ के किरदार में नजर आ रही हैं जो अपनी अगवा की हुई बेटी को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आप सोच सकते हैं माँ की जो ताकत है ना, किस तरह से दिखाई गई होगी फिल्म में। और गांधारी है फिल्म का नाम, और इसमें तापसी पन्नू बनी है बानी, और उनकी बेटी मिष्टी अचानक गायब हो जाती हैं, और इसके बाद शुरू होती है एक माँ की बेचैनी से भरी हुई तलाश। और वो बैठती नहीं है, बल्कि खुद अपने बल पर जो है अपनी बेटी मिष्टी को खोजने के लिए चल पड़ती हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे वो अपनी बेटी के करीब पहुंचने की कोशिश करती हैं, मामला जो है वो उलझता चला जाता है, और उसके बाद कई ऐसे राज मिलते हैं जो इस पूरे मामले को एक खतरनाक जाल में बदल देते हैं। और कौन उनका साथ देता है, कौन उनकी राह में कांटे जो है वो बिछाता है, यही सब कुछ ट्रेलर में दिखाया गया है। कि जो ट्रेलर है ना, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं देखकर। वैसे इसके आगे हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि बहुत सारा सस्पेंस जो है ना हमने खराब कर दिया। तो ये फिल्म जो है ना, बहुत ही तरह तरह के जगहों पर शूट किया गया है, काल्पनिक शहर की भी जो है यहाँ पर बात कही गई है। बहुत ही खूबसूरत नजर आता है ये शहर जहाँ पर वो शूट हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो रहस्यमयी है, जहाँ डर है, खामोशी है, बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। ये फिल्म कब रिलीज होने वाली है? जी, कब रिलीज होने वाली है बताएं क्या? क्योंकि देखिए, आप जब फिल्म के रिलीज होने वाले डेट को जानते हैं तो आप पहले से प्लान करने लगते हैं कि इस में क्या किया जाए। छुट्टी का भी मौसम है, थोड़ा सा जो है ना राखी भी है, इसके बाद बहुत सारी छुट्टियां भी आ रही हैं, तो उन सब को देखते हुए आप फिल्म की टिकट बुक करा सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि ये फिल्म जो है वो कब रिलीज होने वाली है। तो पहले सुनते हैं ये वाला गीत।
2: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ।
1: जी, तापसी पन्नू को आप कहते हैं ना नूर नूर फूर फूर, लेकिन गांधारी जो है इसमें वो एक अलग किरदार में नजर आएंगी। ये फिल्म 3 सितंबर को रिलीज होने वाली है, तो इंतजार करेंगे ना आप इस फिल्म का?

हम भी आपसे दूर नहीं जा रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार और सैफ अली खान की मच अवेटेड फिल्म हैवान जो है वो आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म का टीजर पहले ही दर्शकों के बीच आ चुका है और अब फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया है। अब कैसा है ट्रेलर? फिल्म हैवान के बाद जो है ना उसकी बात अगर करें तो ट्रेलर में अक्षय एक हैवान बने हैं और जिनका मुकाबला हो रहा है फिल्म के हीरो सैफ अली खान से। ट्रेलर में दिखाई दे रहा है कि कैसे एक शहर में हर तरफ सिर्फ डर का माहौल है और एक व्यक्ति जो है लगातार लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। ना जाने कितने बच्चे जो है वो तकलीफ में हैं, उनके बीच दहशत है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिल्म के बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे क्योंकि

आप लोग नाराज हो जाएंगे कि हम सारा सस्पेंस जो है वो खराब करके रख देते हैं। वैसे फिल्म जो है वो 11 सितंबर को रिलीज होने वाली है और सिनेमाघरों में दस्तक देगी। तो अगर आप भी अपने पूरे परिवार के साथ फिल्म देखना चाहते हैं तो अभी से थोड़ा सा प्लान तो करना बनता है। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, और हमारे बॉलीवुड सरताज कौन बने हैं इस पर भी हम नजर डालेंगे।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, और हमने आपसे पूछा था कि फिल्म रिमझिम गिरे सावन, जो बहुत ही लोकप्रिय गीत है किशोर दा का, और अभी हाल में अमित कुमार ने इस गीत को बहुत ही खूबसूरती से गाया है, तो इस फिल्म ये कौन से फिल्म का गीत है? तो आपके बहुत सारे उत्तर मिले हैं, इकबाल, शंकर, अनीता मुखी का भी सही जवाब है, मुरली प्रकाश जी का भी सही जवाब है, वहीं उपेंद्र वत्स जी का बिल्कुल गलत जवाब है, सावित्री और भगवती जी का सही जवाब है, रघु झा का सही जवाब है, और बहुत सारे उत्तर हैं। मंजरी द्विवेदी वो कहती हैं कि कुछ कुछ उलझन में हैं क्योंकि वो ट्रैवल कर रही हैं और अभी फोन में भी नहीं देख सकती, और वो बिल्कुल उधेड़ बुन में हैं, थोड़ा गेस कर रही हैं, उन्हें लग रहा है कि उत्तर आ रहा है लेकिन पहुंचा नहीं पा रही हैं। वहीं मीना जैन का भी सही

उत्तर है, लेकिन बहुत सारे गलत उत्तर भी हम तक पहुंचे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप जुड़ते हैं एफएम रेनबो के साथ, यही बहुत अच्छी बात है। सुधा देवी जी का भी गलत उत्तर है, वो कह रही हैं शराबी फिल्म का। जी नहीं, ये शराबी फिल्म का गीत नहीं है। आप जुड़ी हैं एफएम रेनबो के साथ, पहली बार जुड़ी हैं, और आपने बहुत ही प्यारा सा मैसेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा जो जवाब है बता देते हैं जल्दी से, और हमारा जवाब है, सही उत्तर है मंजिल फिल्म। ये फिल्म 1979 यानी 1979 में आई हुई फिल्म मंजिल, जिसमें कि अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी इस फिल्म में हैं, और एक सस्पेंस फिल्म है। तो इसी फिल्म का गीत है रिमझिम गिरे सावन, और आज के हमारे बॉलीवुड सरताज हैं कौन, मुरली प्रकाश जी, दरभंगा से हमारे बन जाते हैं बॉलीवुड सरताज। आपको पहली बार बॉलीवुड सरताज बनने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

0: जी बिल्कुल, ऐसी ही आवाज निकलती है हमारे आपके भी मन से जब धड़ाधड़ बारिश होती है और कोई ट्रैफिक में अपना फंसा होता है तो लगता है अब ना ना ना ना बिल्कुल भी बारिश नहीं चाहिए, कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, सूखते नहीं हैं और घंटों तक आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं, बहुत सड़कों पर पानी होता है, तो ऐसी ही आवाज निकलती है। वैसे सलमान खान की फिल्म मातृभूमि का हम सभी इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म पहले 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब अनिश्चितकाल के लिए ये रिलीज जो है ना टली हुई है। अब इंतजार करना होगा कि ये फिल्म कब रिलीज होती है। तो मैं कंचन यहीं पर लेती हूँ विदा। आप सभी अपना ख्याल रखिए बहुत अच्छे से और मुझे दीजिए विदा। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।
1: Ready? One, two, one.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल पंजाब और हरियाणा के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन कर रहा है। ये संवाद मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल, फिटनेस और युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के दृष्टिकोण को एक साथ जोड़ना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देशभर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेइचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडर से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मजबूत कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए

मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं और स्थिति सामान्य मौसमी इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरला में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम्मा भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में बताया कि अस्पताल के मातृ और शिशु वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक बढ़कर 77,751 पर और निफ्टी 27 अंक गिरकर 24,308 पर आ गया। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे अंतिम मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में भोजन अवकाश तक 2 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। श्रीलंका पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 अंक बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।
1: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नो हकीकत बनाने ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
2: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नु बनाओ होर भी आसान।
1: तो अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
3: टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
0: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।

0: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।
1: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
2: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ।

0: टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक का गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नु बनाओ होर भी आसान।
1: तो आज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।

0: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।
1: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नो हकीकत बनाउन ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
2: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नु बनाओ होर भी आसान।
1: ता आज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
3: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: डिजिटल भुगतान बन गई कूल। तुसी भी QR कोड स्कैन करके UPI नाल करो भुगतान। डिजिटल भुगतान नाल जितो लाइफ दा हर टूर्नामेंट।
5: भारत करदा है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन हुण है आसान।
7: प्रोग्राम घर परिवार दे विच अगली भैन साडे नाल जुड़ चुकी है, करदे आं इहनां नाल गल। हैलो,
8: सतिका मैडम।
7: हांजी, सत श्री अकाल जी। कौन गल कर रहे हो ते कित्थों गल कर रहे हो?
8: सरबजीत बोलदी हां मैडम, बठिंडे तों।
7: सरबजीत जी, प्रोग्राम घर परिवार दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है।
8: थैंक यू मैडम। मैडम मैं तां आही कहनी हां मैडम, जिवें अग्गे नी कहंदे सी कल युग आ गया, सत युग आ गया, हांजी कुड़ियां पुत जमीना बणाउंदे, धीआं दुख बणाउंदियां।
7: हांजी,
8: ਇਹ ਕੁਛ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨੀ ਤੂੰ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਫਤਿਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ।

प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। साडे जिन्हां श्रोतियां ने आए मेहमान नाल कोई गल सांझी करनी होवे तां ओह साडे स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते संपर्क कर सकदे ने। सो सुनना ना भुलना, मिति 27 अगस्त दिन वीरवार नूं दुपहर 12:10 ते प्रोग्राम मुश्किल दसो हल दसांगे।

0: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।
1: आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, मिति 27 अगस्त दिन वीर

प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। साडे जिन्हां श्रोतियां ने आए मेहमान नाल कोई गल सांझी करनी होवे तां ओह साडे स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते संपर्क कर सकदे ने। सो सुनना ना भुलना, मिति 27 अगस्त दिन वीरवार नूं दोपहर 12:10 ते प्रोग्राम मुश्किल दसो हल दसांगे।

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदो।
1: प्रोग्राम चल रहा है घर परिवार ते साडी स्टूडियो दी घड़ी ते समा हो गया जी 12:56 ते 55 सेकंड ते प्रोग्राम दे विच शामिल करदे आ साडी अगली भैण नू। हेलो,
2: हां जी मैम, सत श्री अकाल।
1: हां जी सत श्री अकाल जी, कौन गल कर रहे हो ते किथों गल कर रहे हो?
2: टूले तो बोल रहे हैं चरणजीत।
1: चरणजीत जी, तोड़ा प्रोग्राम घर परिवार दे विच बहुत बहुत स्वागत है। माहौल मतलब मतलब जेंट्स दे बराबर अधिकार मिले ने?
2: जी हुण तां सारे आई करी जांदे, साडे घरे हजे तक ठीक हैगा वधिया।
1: हांजी
2: जी, फिर एक गल असीं आपदे घर आए दी मानदे आ, हैना, नूं वी आई मानदी हैगी।
1: हांजी
2: हांजी हां, ते होर तुहानूं पता ही आ हुण सारे कुड़ियां कतरियां, हैना, हुण आपदी मर्जी करदियां सारियां गल्लां 'च,
1: हैना। बाकी परिवार तां एवें चलदे ने ना, मतलब सारयां दी रजामंदी नाल होवे, जिथे इकल्ला बंदा अपनी चलावे ओह फिर परिवार नहीं चलदा।
2: हांजी हांजी, राय नहीं चलदा सारियां गल्लां।
1: हांजी पढ़ भी रही ने, नौकरी भी कर रही ने, ते इस विषय ते तुसी की कहना चाहोगे?
2: कुड़ियां तो वधिया काम पढ़दियां करदियां ने, भी अहीं जी तो कोई गल नहीं हैगी, भी चल आखे जोखे भी है ना, अपने मां प्यो दे लगना चाहिए, है ना, रजामंदी नाल सारी गल करनी चाहीदी है।
1: ठीक है जी, तुसी प्रोग्राम घर परिवार दे विच शामिल होए उस दे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी।
2: हां मैं तां हुणी मौके ही करिया सीगा रेडियो, मैनूं पहला पता ही नहीं सीगा।
1: गीत
2: भी बोलिया सारा कुछ जानने जी।

0: वीरा बुचोले दा जात गाई दे जग दी आवे जानूना। ठीक है जी।
1: बहुत वधिया जी, तुसी पुराना टाइम याद करवाता, क्योंकि
0: हाँ जी
1: अजकल ये गीत बहुत ही घट चलते ने।
0: हाँ जी हाँ कि सारे गीत पुराने जानते हैं।
1: हाँ जी
0: हाँ
1: ठीक
0: कितने
1: है जी।
0: मौका मिला था कितने गावांगे।
1: हाँ जी ठीक है जी,
0: हाँ जी
1: धन्यवाद जी, जुड़े रहो
0: हाँ
1: आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे प्रसारणा दे
0: अपना
1: नाल।
0: बलजीत सर को मड़ा स्नेहा कर लियो अपना।
1: हाँ
0: ठीक
1: जी
0: है जी। ठीक है जी।
1: ठीक है जी, धन्यवाद जी।

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी टमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदो 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी टमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदो।
1: प्रोग्राम घर परिवार दे विच अगली भैन साडे नाल जुड़ चुकी है, कर दिया इन्हां नाल गल। हैलो
2: हेलो। हाँ जी, एक मिनट।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: हाँ जी, सत श्री अकाल मैडम
1: हाँ
0: जी।
1: जी, सत श्री
0: हाँ जी,
1: अकाल जी, कौन गल कर रहे हो?
0: बठिंडा तो बोल रहे हैं जी, पुछो खुर्द। हाँ जी, हरपाल कौर।
1: हरपाल कौर जी, प्रोग्राम घर परिवार दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है।
0: अच्छा, धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया जी। ते हाँ जी, पहली बार फोन लगे जी, अपना तो बहुत बारी फोन लाया जी, थोड़े फोन ही नहीं लग रहा मेरे को।
1: हाँ
0: अज
1: जी,
0: बस
1: लाइन बिजी
0: छुट्टी आ
1: चलदी
0: गई।
1: हुंदी है ना, इस करके मतलब सारियां भैणां ही इस प्रोग्राम दे विच फोन मिलाउंदियां ने।
0: अच्छा
1: हाँ
0: जी,
1: जी, तुहाडा पहली
0: नहीं तो
1: बार फोन लग्या।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: हाँ
0: पहली
1: जी,
0: बार लग
1: सानू भी
0: रही
1: बहुत खुशी हुई।
0: है। ठीक है मैडम, तो बहुत थोड़ी बाजा, बहुत ही प्यारे बाजा, बहुत मीठिया लगते हैं। कि तुम मिश्री खाने हो के बोलन लगी। बहुत मतलब प्यारिया लगते हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम करते हो, सारे प्रोग्राम सुनते हैं जी। हाँ जी, घर परिवार
1: हाँ
0: शाम
1: जी,
0: समानी सारे सुनते हैं जी अपने,
1: हाँ
0: बहुत बढ़िया प्रोग्राम होंगे जी अपने। ते और दसो जी की
1: हाँ
0: गल
1: जी,
0: कर
1: जिवें
0: करिए
1: कि
0: जी।
1: अज साडा विषय है कि कुड़ियां नूं कि मुंडियां दे बराबर अधिकार मिले नी, ते
0: हाँ
1: इस विषय च
0: जी,
1: तुसीं की कहना चाहोगे कि तुहाडे घर विच किदां दा माहौल है?
0: साडे कोल तां जी बहुत वधिया माहौल है जी।
1: हाँ जी,
0: अजे थोड़ा जी कुड़ियां जी आत्महारी चलदियां है ना,
1: हाँ जी,
0: आत्महारी करदियां जी, मापिआं दी घट ही मानदियां जी, जिहड़ियां चंगियां बीबियां तां
1: बाकी
0: चंगे हो जाने।
1: बाकी समा बदल रहा ना, समय दे
0: हाँ
1: नाल नाल
0: जी,
1: सारा कुछ ओवें चलदा
0: समय
1: गा।
0: दे नाल उहें चली जांदा जी।
1: हाँ
0: हाँ,
1: जी,
0: समा बहुत बदल गया जी।
1: हाँ जी,
0: ते चलो, हक मिलना भी चाहिदा, पर अपने भैन भरा सारा कुछ ही करदे भैणां दा है ना।
1: हाँ जी,
0: ते हाँ ना, फिर जे आप बराबर हिस्सा लवांगे, फिर अपने ओह मदद करो ओह करनगे है ना,
1: हाँ
0: अपना
1: जी,
0: जाना आना बंद कर देणगे, कहीं तुझे भी सब ले गियां है ना।
1: हाँ जी,
0: ते
1: हाँ जी,
0: छक्का भरदे है, अपने जाते आते रहते, प्यार बनया रहा है ना।
1: हाँ
0: हाँ
1: जी,
0: जी, बस अपन तो यही गल करते हैं जी, भैन भरा ना बनाई रखो आप देना है ना। ते अपना कुड़ियां हिस्से कितने लेके जानी है ना।
1: हाँ ये भी है।
0: हाँ हाँ जी, हो जी।
1: बाकी मतलब प्यार दी कोई गल हुंदी हैगी,
0: हाँ जी,
1: पैसे तो आंदी जांदे रहंदे ने।
0: हाँ जी, वही गल है
1: हाँ
0: ना, पैसे
1: जी,
0: तो आंदी जांदी रहिंदे जी, प्यार बने रहे अपने भैन
1: हाँ,
0: भरावां दा,
1: बाकी
0: रिश्ते जी बहुत घटी जाते।
1: कुड़ियां ने सारी उम्र अपने भरावां नाल ही बरतना हुंदा,
0: हाँ
1: भरा ही
0: जी, हाँ
1: पेके
0: जी, हाँ
1: हुंदे ने।
0: जी, हाँ जी, ये बहुत बड़ी गल है जी, बहुत रिश्ते अपना कहने भी बहुत ना हुण घटी जांदे जी, बहुत ज्यादा है ना, मोह प्यार
1: हाँ
0: हुण
1: जी,
0: ना निकटाता जी, बहुत ज्यादा है ना।
1: हाँ जी, हाँ
0: हाँ
1: जी,
0: जी, हाँ जी,
1: ठीक है जी। तुसी
0: हाँ।
1: प्रोग्राम घर परिवार दे विच शामिल होए उस दे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: अच्छा जी, ठीक है जी,
1: जी
0: धन्यवाद जी। ये अज तुसी गीत का कुछ सुनाओ, नहीं कि गलबात ही कर
1: हाँ जी,
0: दिया जी।
1: सुनावांगे जी, तुहानू गीत ही
0: अच्छा
1: सुना रहे हैं।
0: अच्छा ठीक है जी,
1: हाँ जी,
0: अपना जी जेड़ा लोक गीत है ना गाउंदी हुंदी, अपना गुरमीत
1: अज
0: बावा,
1: तुहानू
0: गुरमीत
1: असी
0: बावा,
1: अपनी पसंद दा सुनावांगे, अगली वार तुहाडी पसंद दा सुनावांगे।
0: ठीक है जी, गुरमीत
1: ठीक
0: बावा सुना दो जी मैंने अगली बार जो तुसी
1: ठीक
0: सुनाया। हाँ
1: ठीक है
0: जी,
1: जी, प्रोग्राम विच
0: ठीक
1: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: प्रोग्राम कर परिवार।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम घर परिवार FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी ट्यून कीता है आकाशवाणी FM बठिंडा। स्टूडियो दी घड़ी ते समा है जी 1:09:40। ठीक 1:10 ते तुसी सुनोगे प्रदेशी खबरां आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों। खबरां लई करदे आं कुछ पल इंतजार।

कुछ बातें दिल में रह जाती है, कुछ यादें आंखों में बस जाती है। जिंदगी तो चलती रहती है अपनी रफ्तार से, मगर कुछ मुलाकातें हमेशा याद आती हैं। जी हाँ, प्रोग्राम है टेलीफोन मिलाओ जी, ते लैके हाजरा मैं तुहाडी रेडियो दोस्त अमनदीप कौर, ते मेरे वालों प्रोग्राम सुनने वाले तमाम श्रोत्या नूं प्यार भरी नमस्कार जी। श्रोतियो, तुसी प्रोग्राम विच शामिल होने लिए 0164-2240-331 नंबर डायल करना है, ते सानू दसनी है अपनी हिंदी गीतां दी पसंद, ते असी कोशिश करांगे तुहाडे पसंद दे गीतां नूं सुनाउण दी। ते फिर बिना देर कीते तुसी जुड़ो प्रोग्राम टेलीफोन मिलाओ जी विच, ते डायल करो 0164-2240-331 नंबर। ते जदों तक पहले श्रोता साडे नाल जुड़दे ने, आपां सुणदे हां मेरी पसंद दा एक गीत।

0: influenza spread in country, says no cause for panic, just heightened vigilance required. Festival of Onam been celebrated with tradition fervor. Birthday of Prophet Hazrat Muhammad, Eid Miladun Nabi, been celebrated in various parts of the country. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
2: India today stands as the fastest.
3: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
2: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
1: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
2: इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस हैव सीन।
3: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
2: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
1: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
4: फूड इनसिक्योरिटी रिमेन्स।
5: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को

0: पैदा हो सकता है।
1: हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
3: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
2: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सिलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिन जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR AIEEPG और AICE PhD 2026 परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दास गुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरी

0: माला अरुणमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के

पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। साडे जिन्हां श्रोतियां ने आए मेहमान नाल कोई गल सांझी करनी होवे तां ओह साडे स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते संपर्क कर सकदे ने। सो सुनना ना भुलना, मिति 27 अगस्त दिन वीरवार नूं दोपहर 12:10 ते प्रोग्राम मुश्किल दसो हल दसांगे।

0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
3: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।
4: प्रोग्राम सुरीली दुपहर दे विच जॉर्डन संधु दे इस गीत नूं सुनन दी फरमाइश दे लई सानू खत आए ने। गिदड़बाहा तो मनजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल, बेबी हिनाशा ते बेबी कैरवी, ते लंबी तो विनू बांसल, आरव बांसल, अगम बांसल, दर्शना देवी, ते गुरु नानकपुरा बठिंडा तो किशोर सबलानिया, सवित्री सबलानिया, सुमन सबलानिया ते अंशु, ते वार्ड नंबर 6 पिंड त्योणा जिला बठिंडा तो मंगा सिंह बराड़, गुरमेल सिंह बराड़, महक दीप कौर बराड़, करणदीप सिंह बराड़, ते पिंड कोटशमीर नेड़े पार्क माखापत्ती तो जथेदार बाबा प्यारा सिंह, सुखपाल सिंह, परगट सिंह ढिल्लो, पप्पू शर्मा, गुरमेल सिंह चट्ठेवाला, पाल सुनियार, जगजीत सिंह मट्टू, सुखदीप सिंह गिल, ते जिला लुधियाना पुरानी मंडी मुलापुर तो राजेश जैन, अरुणा जैन, गौतम जैन, रसगुल्ला जैन, नगीना जैन, ते मुलापुर मंडी तो ही कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन ते दीपक जैन, ते पिंड मूलियावाली जिला फाजिलका तो विनोद काठपाल, प्रवीण, हनी, दीक्षा ते जन्नत काठपाल, ते नेड़े धर्मशाला पिंड कोटली अबलू श्री मुक्तसर साहिब तो सीताराम केसरी, सुखा सिंह सरपंच कोठे ढाबा वाले, देबी कोटली किंदा बराड़ मोटर वाला, नीला सिंह पिंड गंगा, काला हलवाई रूप सिंह ते राणा नंबरदार, ते इन्हां दे नाल धर्मा कोटली। ते अगला सानू खत जेड़ा प्राप्त होया है मुक्तसर तो बाबू सिंह तिमान, बलजिंदर कौर तिमान, रवनीत निशु ते भुपिंदर। ते अगला गीत सुनदे हां जी रंजना दी आवाज़ दे विच, ते इन्हां नूं सुनने वाले स्रोतियां दे नाम, फरमाइश करने वाले स्रोतियां दे नाम आपां फिर देखदे हां।

प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। साडे जिन्हां श्रोतियां ने आए मेहमान नाल कोई गल सांझी करनी होवे तां ओह साडे स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते संपर्क कर सकदे ने। सो सुनना ना भुलना, मिति 27 अगस्त दिन वीरवार नूं दोपहर 12:10 ते प्रोग्राम मुश्किल दसो हल दसांगे।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपका नाम क्या है?
2: अरे ममता जी पहले नमस्कार कर लूं। ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और अब आपके मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ या पूछना चाहती हूँ।
1: वो तो बता दिया आपने,
2: पर आप ये क्यों पूछ रही थी?
1: यही तो सवाल है कि क्यों पूछ रही थी कि मैं जानना चाह रही थी कि आप चौंकिए कि आखिर
3: आपका नाम क्या है बता दिया, आपके पिता का नाम क्या है बता दिया, आपके पति का नाम क्या है बता दिया, आपके सब कुंडली पूरी बता दी, लेकिन तब हमें चौकन्ना होना पड़ता है जब कहीं भी जाओ तो आपको बाध्यता के रूप में पूछ कहा जाता है कि आप अपने पति का नाम भी लिखो या फिर पिता का नाम लिखो, ठीक है वहां तक भी, और आपका सरनेम भी जरूरी है। फिर अगला सवाल आता है कि आपका शादी के पहले क्या नाम था और शादी के बाद, तो शादी के बाद आपने नाम नहीं बदला? नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? तो शादी के बाद सरनेम नहीं बदला? नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? ये अक्सर सवाल होता
2: है। हम महिलाओं को इन इन सवालों का सामना करना पड़ता है।
3: पुरुषों को क्यों नहीं करना पड़ता?
2: पुरुष जवाब दे।
3: तो आज हमारे लगता है कमेंट बॉक्स सखाओं से भरेंगे और हमारे सखा जवाब देंगे इसका।
2: हाँ, पता नहीं जवाब देंगे या फिर डर के मारे जवाब भी नहीं देंगे,
3: खामोश बैठ जाएंगे। तो ठीक है, सखियां सखा हमारे इनबॉक्स में मतलब कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि क्या कारण है। तो असल में तो ये सदियों से परंपरा चली आ रही है कि पुरुष सत्ता समाज रहा है, लेकिन अब जब महिलाएं बाकायदा बराबरी से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, बल्कि आगे चल रही हैं, आप शिक्षा व्यवस्था हो या और कोई क्षेत्र हो जहां महिलाएं आगे बढ़ रही हैं पुरुषों से भी आगे, तो फिर अभी भी उन सवालों से जूझने की क्या जरूरत है? तो उन सवालों से भी आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना?
2: या फिर अगर कोई महिला यानी जो अभी युवतियां हैं वो चाहती हैं कि हम अपने मायके का नाम ही लगाए, तो उसमें भी उन्हें इजाजत आराम से मिल जाना चाहिए या उनकी उनके लिए सहमति होना चाहिए? ऐसे नहीं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना हो, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है नारी की पहचान बने उसका अपना नाम।
3: बिल्कुल, और अपने नाम से पहचानी जाए ये हमारा मुद्दा है, लेकिन हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोताओं के क्या विचार है इस मामले में, खास तौर से इस मुद्दे का हमें इंतजार रहेगा।
2: साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम बालारामपुरम साड़ी केरल के बारे में हम चर्चा करेंगे
3: और शब्द

0: हमारा विचार आप सभी के, मतलब हमारे श्रोताओं के, ईर्ष्या शब्द ऐसा है जिससे कोई वंचित नहीं रह पाता है। लेकिन ईर्ष्या अगर सहज होती है, सकारात्मक होती है, मान लीजिए कोई बहुत ऊंचाई पर जा रहा है और देख कर लगता है कि हम भी इसके इसी तरह आगे बढ़े, तो ये एक ठीक ईर्ष्या है। लेकिन ईर्ष्या में जब जलन कुढ़न आ जाती है, आपकी मानसिक अस्वस्थता आ जाती है, वहां पर ईर्ष्या दुखद हो जाती है, तकलीफ देह हो जाती है।
1: यानी कि अगर आपने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है तो मुझे थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाएगी, अरे काश मेरे पास भी ऐसी साड़ी, तो ये ईर्ष्या चल
0: सहज
1: जाती
0: ईर्ष्या
1: है
0: है।
1: कि चलो हम भी ले सकते हैं, ममता जी खुद ही कहें कि सोनाली पहन लेना किसी
0: और
1: दिन।
0: ये कहें कि आप जो लड्डू खा रहे हैं बहुत अच्छे लड्डू बनाते हैं। तो ये सब ऐसी तारीफ जो होती है, एक सहज ईर्ष्या होती कहलाती है। लेकिन
1: जी
0: जब ईर्ष्या रूप ऐसा ले ले
1: उसका
0: कि
1: विकराल रूप
0: जिसने
1: ले ले।
0: विकराल रूप ले ले और आपके पीछे मतलब बुरा रूप ले ले, तो फिर ठीक नहीं होता।
1: जी
0: तो इसमें हमारे श्रोता बताएं कि उनके अपने क्या अनुभव हैं,
1: जी
0: क्या कभी ऐसे लोगों से सामना पड़ा कि जो ईर्ष्या के कारण जिनसे आपके रिश्ते खराब हो गए हों, या फिर ईर्ष्या के कारण आपका कोई नुकसान पहुंचा हो, आपके करियर में बाधा पहुंची हो, ईर्ष्या, तो बताएं।
1: हमारे बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारी सखियों ने इस विषय पर लिखा है, पर हर बार ऐसा ही होता है कि हमारे साथी लिखते हैं पर अपने बारे में नहीं लिखते हैं कि
0: दूसरों के
1: उनके
0: बारे
1: यहाँ
0: में।
1: उनके क्या विचार हैं या उनके क्या उदाहरण है, उन्हें कैसे जूझना पड़ा इस शब्द से या इस बात से। अपने बारे में लिखे तो ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। और व्यंजन, रक्षाबंधन के विशेष व्यंजन, जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए, यहाँ पर कच्चे नारियल के व्यंजन बनते हैं, जैसे नारली भात कहते हैं या फिर नारियल की बर्फी कहते हैं। तो आपके क्षेत्र में कौन से, आपके घर में कौन से व्यंजन बनते हैं, और उसकी विधि लिखकर भेजिए। बहुत सारे श्रोताओं ने भर भर के मिठाइयों के नाम लिखकर भेज दिए हैं, पर उसके विधि लिखे ना, तो हम भी लोगों को पढ़ के सुनाए तो उनके घर में भी वो
0: और
1: मिठाई
0: हो
1: बनेगी।
0: सकता है इसी रक्षाबंधन पर, जो 28 तारीख को है,
1: जी
0: तो उस रक्षाबंधन पर वही मिठाई बन जाए जो हमारे श्रोता लिख भेजे। और ओणम का पर्व और ईद ए मिलाद,
1: जी
0: तो ईद ए मिलाद के बारे में हम बात करेंगे, ओणम के बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं ये।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे, और सोनाली, आज ईद मिलाद है और इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, और इनके जन्मदिन के साथ साथ इनके स्मृति दिवस के रूप में भी आज के दिन को याद किया जाता है।
1: और ईद मिलाद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश प्रेम, दया और इंसानियत का है। और पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को सत्य, सदाचार, करुणा और जरूरतमंदों की सहायता करने की सीख दी थी, और यही अपने व्यवहार में लाने का संदेश था कि विनम्रता और मानवता को स्थान देने की प्रेरणा ये दिन देता है।
0: बिल्कुल, इस दिन कई स्थानों पर धार्मिक सभाएं होती हैं, जुलूस और सामूहिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और जरूरतमंदों की मदद की जाती है। और
1: और आज
0: आज
1: एक और खास दिन है, आज ओणम है, और ओणम केरल का प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय त्योहार है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि का प्रतीक ये दिन माना जाता है।
0: बिल्कुल, ओणम के अवसर पर घरों की साफ सफाई की जाती है, जो हर त्योहार पर की जाती है, और आंगन में रंग बिरंगे फूलों से सुंदर सजाया जाता है और पुक्कलम सजाया जाता है।
1: यानी उसे जो फूलों की रंगोली होती है उसे पुक्कलम कहते हैं।
0: और पूरा वातावरण उत्सव और उल्लास से भर उठता है।
1: और ऐसा कहा जाता है कि ओणम का संबंध राजा महाबली से जुड़ी पौराणिक कथा से है। मान्यता है कि राजा महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनके राज्य में सुख समृद्धि थी। माना जाता है कि ओणम के समय महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं, इसलिए लोग उनका स्वागत बड़े प्रेम और उत्साह से करते हैं।
0: ओणम हमें केवल उत्सव मनाना ही नहीं सिखाता, बल्कि प्रेम सिखाता है, समानता की भाव, भाईचारे और प्रकृति के सम्मान का संदेश भी देता है। ओणम फूलों की तरह अलग-अलग रंगों और विविधताओं से भरा ये पर्व हमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। ओणम केरल की संस्कृति, परंपरा और खुशहाल जीवन का सुंदर प्रतीक भी माना जाता है
1: और
0: ओणम
1: ये
0: को।
1: पर्व का आकर्षक हिस्सा ओणम सद्या है ममता जी। वो जो थाली होती है ना, केले के पत्ते पर सारे व्यंजन परोसे जाते हैं, अनेक पारंपरिक व्यंजन। उसमें परिवार और समाज एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। साथ ही नौका दौड़, पारंपरिक नृत्य गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम ओणम के उत्सव को और भी जीवंत बनाते
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और केले के पत्ते की बात से याद आई कि
1: हैं।
0: अभी यहाँ मुंबई में या कई शहरों में ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर केले के पत्ते पर खाना मिलता है, तो कितना स्वाद बढ़ जाता है
1: बहुत
0: ना।
1: स्वाद बढ़ जाता है, यानी वो देख के ही हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, और मन प्रसन्न हो तो खाना हमें अच्छा ही लगता है।
0: बिल्कुल, और जब गाने सुनते हैं तब भी प्रसन्नता भर जाती है। सुनते हैं ये गाना चोरी चोरी फिल्म का।

0: मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो,
1: ये तो बताओ कि तुम
2: सोनाली जी। वैसे महिलाओं से अगर पूछा जाए कि आपको कौन सी साड़ी पसंद है तो बताना मुश्किल हो जाएगा,
3: बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कहूँ या वो कहूँ, इसकी ये खासियत है तो उसकी वो खासियत है,
2: यहाँ जाने के लिए वो साड़ी, फलानी जगह जाने के लिए दूसरी साड़ी चाहिए। तो साड़ियों का भरमार हो लोगों के पास तो भी साड़ी से दिल नहीं भरता है
3: और भरना भी नहीं चाहिए।
2: साड़ी दरअसल अपने देश की परंपरा है और पारंपरिक साड़ी, पारंपरिक पोशाक भरा किसी ने अच्छा लगता है। तो इतने तरह की साड़ियां हैं कि जिसमें चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल लोग साड़ियों के प्रकार के बारे में बहुत ही जागरूक हो गए हैं कि फला साड़ी ही हमें फला मौके पर पहननी है और हम इसीलिए साड़ी के बारे में हर हफ्ते लेकर आते हैं जानकारियां थोड़ी बहुत। आज बालारामपुरम साड़ी के बारे में हम जानकारी देंगे,
3: जो ओणम का त्योहार है तो क्यों ना हम केरल
2: की बात करें। तो बताइए क्या खासियत
3: है? साड़ी केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के बालारामपुरम क्षेत्र की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है और लगभग 200 वर्षों से चली आ रही इसकी बुनाई परंपरा का संबंध त्रावणकोर के राज परिवार से माना जाता है।
2: और इस साड़ी में प्राकृतिक बिना रंगे और सूती धागे का प्रयोग किया जाता है। इसकी महीन बुनावट इसे हल्का और आरामदायक बनाती है। इसकी सबसे पहचाने जाने वाली जो विशेषता है वो ये है कि किनारे और पल्लू पर दिखाई देने वाली सुनहरी जरी, जिसे केरल में कसावू कहा जाता है, ये होती है।
3: यानी इसका कलर सिर्फ क्रीम, ऑफ व्हाइट या प्राकृतिक सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर सुनहरा बॉर्डर होता है और कहीं कहीं छोटे बुट्टे और रंगीन धागों का प्रयोग भी मिलता है और पारंपरिक पिट लूम और हाथ से नियंत्रित बुनाई इसकी विशिष्ट पहचान है। कुछ डिजाइनों में बुनाई के कारण बॉर्डर पर हल्की उभरी हुई धारियां भी दिखाई देती है।
2: और बालारामपुरम साड़ी को जो पंजीकृत किया जाता है इस
3: GI Tag के
2: इस प्रमाण पत्र की तारीख 19 मार्च 2009 है
3: और उन्हें GI Tag मिला हुआ है।
2: और इसके अलावा बालारामपुरम की बुनाई परंपरा को त्रावणकोर

0: महाराजा बालाराम वर्मा के समय से जोड़ा जाता है और राज परिवार के लिए महीन वस्त्र तैयार करने के उद्देश्य से तमिलनाडु के तुरुनेलवेली क्षेत्र से कुशल बुनकर परिवारों को यहाँ लाया गया था और धीरे धीरे यही कला बालारामपुरम की सांस्कृतिक पहचान बन गई।
1: और ये जो साड़ियां हैं ना ममता जी, बालारामपुरम साड़ी विशेष रूप से ओणम, विवाह, मंदिर दर्शन और अन्य शुभ अवसरों पर पहनी जाती है। इसकी सादगी और सुनहरी किनारी के कारण पारंपरिक होने के साथ साथ बेहद सुरुचिपूर्ण दिखाई देती है।
0: और बालारामपुरम साड़ी में केरल की धरती की सादगी भी होती है, सुनहरी कसाऊ में उसकी सांस्कृतिक समृद्धि भी झलकती है, तो इसलिए ये साड़ी बेहद खास होती है और केरल के लोग तो इसे बहुत पसंद करते
1: और है
0: हैं।
1: ना, वो ऑफ वाइट कलर की साड़ी है, फिर गोल्डन कलर के गहने हैं और उसके बाद में लंबी सी चोटी, उसमें गजरा लगा के, वो सफेद कलर का तिलक लगा के, जो जो महिलाएं दिखती है इतनी सुंदर लगती है। और फिर अगर सामने केले के पत्ते पे व्यंजन हो और उसे बैठ के खाया जाए तो कितना सुंदर वो
0: क्या बात है, वो
1: माहौल।
0: आभा अलग ही होती है और एक गरिमामान व्यक्ति तो लगता है देखकर।
1: जी
0: अब एक गाना सुनवाते हैं और दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने ईर्षा शब्द हमारा विचार आपके में बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। एक साथी कहते हैं, ईर्षा मन की वो आग है जो दूसरों को नहीं सबसे पहले हमें ही जलाती है। किसी की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा ले और अपने रास्ते पर आगे बढ़े। अगर मन में ईर्षा नहीं होगी तो जीवन बहुत अधिक सुंदर होगा। ये इन्होंने बात
1: हाँ
0: बहुत
1: हाँ
0: सही लिखी। साथ ही एक साथी कहते हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्षा कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नि तुल्य है। जैसे अग्नि अपने समीप में आई वस्तु को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ईर्षा मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है। दूसरे की प्रगति को देख नहीं सकना जलन की भावना है। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। यही नकारात्मक सोच उनके पतन का कारण बनता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की ईर्ष्या ना करें। एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि कभी भी ईर्ष्या को कम करके नहीं आंकना चाहिए। आपके सबसे करीबी शुभचिंतक भी शायद आपको खुद से ज्यादा सफल होते देखकर ईर्ष्या से भर उठते हैं। जब कोई नकारात्मक ईर्ष्या से प्रेरित होता है तो वो सफल व्यक्ति की कामयाबी के प्रति हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है। ईर्ष्या एक ऐसा दानव है जो अलग अलग मौकों पर अप्रत्याशित ढंग से उभरता है। सवाल तो यह है कि आप ईर्ष्या करना छोड़ सकते हैं, लेकिन जब दूसरे आपसे ईर्ष्या करें तब आप क्या करें?
0: जवाब दीजिए।
1: तब बस और कोई रास्ता नहीं होता है कि आप उन्हें नजरअंदाज करें।
0: ये
1: इसके
0: सही
1: अलावा
0: जवाब
1: और
0: है।
1: कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर ईर्ष्या करने वाले से आप लड़ने भिड़ने गए, बहस करने गए, तो और मुसीबत में पड़
0: हमारे हाथ
1: जाएंगे।
0: जल जाएंगे।
1: और एक हमारी और सखी लिख रहे हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नि तुल्य है। जैसे आपने पढ़ी तो नहीं
0: जी
1: टिप्पणी,
0: जी जी
1: तो जैसे अग्नि अपने समीप से आई वस्तु को जलाकर राख बना देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है।
0: एक साथी ने लिखा है कि ईर्ष्या एक ऐसा नकारात्मक मानसिक भाव है जो मनुष्य को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर देता है। ईर्ष्या का अर्थ है दूसरों की प्रगति, सुख या ऐश्वर्य को देखकर बिना किसी वास्तविक कारण के खुद दुखी होना। यानी ये जो है ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, खुद हमेशा दुखी ही रहते हैं। और जब हम दुखी रहेंगे ना, तो हमारा घर, हमारा जो मन है, शरीर है, वो हमेशा निराशा का घर बन के रह जाएगा और हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।
1: बिल्कुल, कई बार तो ईर्ष्या इतनी मतलब जरा जरा सी बात में होती है कि दो दोस्त हैं और तीसरा आपको देख रहा है, तो दोस्तों को दो दोस्तों के बीच प्रेम स्नेह देखकर भी लोग ईर्ष्या करते हैं कि अरे
0: कितनी
1: देखो
0: अच्छी
1: कितनी
0: दोस्ती।
1: अच्छी दोस्ती है, हमारे पास नहीं है। किसी के घर को देख के ईर्ष्या होती है, किसी की कामयाबी देखकर ईर्ष्या होती है, किसी की प्रतिभा देखकर ईर्ष्या होती है। मतलब ईर्ष्या के कुछ कारण नहीं है,
0: उसकी कोई
1: लोग
0: परिभाषा ही नहीं है।
1: जरा जरा सी बात पे लोग ईर्ष्या करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईर्ष्या का तात्पर्य है पराई उन्नति से दुखी होना। ये एक ऐसा अवगुण है जो मनुष्य को आत्मविनाश की ओर धकेल देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सदैव अशांत रहता है और दूसरों के अहित की कामना करता है। भाई ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए।
0: एक साथी कहते हैं ममता जी कि बहुत से लोगों की ये फितरत होती है कि कोई भी उनका अपना उनसे किसी भी क्षेत्र में आगे निकल जाए तो उनको सहन नहीं होता और वो उसको पीछे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये ईर्ष्या नहीं, जलन होती है।
1: तो बस ये ईर्ष्या जलन दोनों सखियां हैं, बहनें हैं, इनसे दोनों से दूर रहना चाहिए। और हमें दूर नहीं जाना है, करीब आना है सखी सहेली के। लेकिन एक ब्रेक के

विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और बात चल रही थी ब्रेक पे जाने से पहले ईर्ष्या की कि किस बात पर। अच्छा सोनाली जी बताइए, आपको कभी किसी से ईर्ष्या हुई है?

0: पता नहीं, मुझे तो ऐसे ईर्ष्या होती नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी मिलती है ममता जी अगर कोई आगे जाता है,
1: और
0: कोई अच्छा
1: अपना कोई
0: रहता।
1: खास तौर से अगर आगे बढ़ता है तो खुशी मिलती है। लेकिन हाँ, कई बार बचपन में पढ़ाई लिखाई में जो सहेलियां होती थी उन्हें देखकर लगता था कि काश ये गुण हमारे पास भी होता। लिखने की जो ताकत क्षमता होती थी,
0: जी,
1: पढ़ने में जो तेज होती थी, तो लगता था कि हम भी इतने
0: या
1: मार्क्स
0: फिर
1: पा जाएं तो अच्छा।
0: कोई हमारी सहेली

0: अवगुण है। कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं, उनकी आदत सुधारने पर भी सुधरती नहीं है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि ईर्ष्या एक दुर्गुण है। आपके पास जो टिप्पणी है जरा पढ़कर सुनाइए, क्या
1: जी,
0: लिखा है?
1: एक साथी कहती है, मनुष्य है तो हमें भी अपने ईर्ष्या द्वेष का सामना ही करना पड़ता है, और वो भी बचपन में। कभी किसी को गुब्बारे घड़ी आदि मिल गए, हमारे पास नहीं रहे, किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए, वैसे वैसे ऐसी भावनाएं प्राय कम होती चली जाती है। अंत में स्वीकार कर लिया जाता है कि जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये तो बहुत सही है। एक साथी कहते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके ईर्ष्या भाई, ईर्ष्या एक मानवीय गुण है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, किंतु षड मनोविकारों काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष में इनकी गणना अवश्य है, और इससे बचते रहने का निर्देश भी है। यद्यपि ईर्ष्या किसी के प्रति उत्पन्न हुए द्वेष के मानसिक उद्वेग का ही परिणाम है, इससे दूर रहने के लिए उद्वेग को यहीं पर रोकना उचित है।
0: भाई, तरह तरह की बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी सखी है कि भाई ईर्ष्या तो इतनी भी नहीं चाहिए कि मेरी सामने वाले पड़ोसन तो इतनी ईर्ष्या करती है। जब मैं सवेरे नाश्ता चाय बनाऊं और हमारे बुढ़ऊ अगर उसे आंगन में, क्या समझ भी नहीं आया कि आंगन में गिरे आम के पत्ते सहेजते झाड़ू मारते दिखे, मतलब घर के बुजुर्ग की बात है कि झाड़ू मारते दिखे तो वो भी आंगन में झाड़ू मारने निकल पड़ती है चाहे आंगन में कुछ भी ना हो। भाई, ये तो गजब की ईर्ष्या। अच्छा, इसी बहाने साफ सफाई हो
1: साफ सफाई हो
0: जाती है।
1: जाएगी।
0: एक सखी है जो लिख रही है कि ईर्ष्या या जलन भाई बहनों में, भाई भाई या पड़ोसियों की तरक्की से रहन सहन में हो जाती है। दरअसल ये ईर्ष्या स्वाभाविक और सहज होती है। ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है। और बहुत सारे श्रोता इस तरह की बात लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या विषय पर आप लोग बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हैं। ईर्ष्या विषय पर इसमें नकारात्मक ईर्ष्या का जिक्र किया गया है। क्या ईर्ष्या सकारात्मक और नकारात्मक भी होती है? क्या उदाहरण देकर समझा सकती हैं आप? भाई देखिए, ये कोई पाठशाला तो है नहीं कि हम आपको समझा सकें। हम यहाँ पर, ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर श्रोताओं की टिप्पणियों के साथ हम अपनी बात, अपने विचार साझा करते हैं आपसे। तो हम अपने विचार यही साझा कर रहे हैं कि ईर्ष्या जब सकारात्मक होती है तो ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी की कामयाबी को देखकर लग रहा है कि काश हम भी इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाते, ऐसा कुछ कर पाते, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
1: और अगर हम मेहनत करने लग गए,
0: तो फिर वो सकारात्मक हो गई।
1: हाँ,
0: और अगर हम सिर्फ जलते कुटते रहे तो वो नकारात्मक
1: बस
0: ही हो
1: घर
0: गई।
1: में बैठे रहे और बस जलते ही रहे, कुछ मेहनत ही नहीं की हमने,
0: बिल्कुल।
1: तो वो
0: तो
1: नकारात्मक हो जाती
0: हाँ,
1: है।
0: तो ईर्ष्या से जुड़ी हुई तमाम बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि कब उन्हें किससे ईर्ष्या हुई। और
1: और
0: कई
1: व्यंजन
0: बार
1: भी नहीं लिखे।
0: हमें इंतजार है, अभी तो प्रोग्राम बाकी है, व्यंजन तो लिख भेजेंगे।
1: हाँ, कि आपके
0: और
1: घर में कौन सी मिठाई बनती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ईर्ष्या कई बार हमारे श्रोताओं ने यह भी लिखा है कि महिलाओं में ज्यादा होती है। महिलाओं में तब होती है जब उसके साथी को शेयर करने की कोई कोशिश करे तो महिला निश्चित रूप से लड़ पड़ती है। और
1: हाँ,
0: बहुत सारी फिल्में भी इस पर बनी है
1: इस विषय पर बनी है।
0: कि जब दो महिलाएं आपस में ईर्ष्या करती हैं, ये कहने की बात है। दरअसल ईर्ष्या तो पुरुष में भी होते हैं। ये ऐसा गुण है जो सब में पाया जाता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक।
1: छोटे या बड़ी मात्रा में सब में होता है।
0: फिलहाल सुनते हैं गाना।

0: कहाँ खो गई से सुना लीजिए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, ईर्ष्या 4 दिनों की जिंदगानी है और दूसरों से ईर्ष्या करके व्यर्थ ही अपने शरीर को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए। हर किसी को अपने नसीब का मिलता है।
0: और कर्मों का
1: और एक
0: नसीब के साथ साथ।
1: सखी ने भी ये भी लिखा है ममता जी, कि कुछ चाहत में मन में रहती है तो ये लगता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। कुछ बातों को देखकर ऐसा लगता है पर ईर्ष्या नहीं होती।
0: ये सहज बात होती है, मन में आती है, आए विचार और खत्म हो जाए तो कोई परेशानी का सबब नहीं है, लेकिन बहुत देर तक आपको तकलीफ देती रहे तो फिर बात गलत हो जाती है। वैसे आज हम एक और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो है नारी की पहचान। तो स्त्रियों की पहचान के साथ हमेशा तमगा रहता है, पति की पहचान से फलाने की वाइफ या उनके सरनेम से ही जाना जाता है, ये फिर पहले पिता के नाम से बच्चों की मतलब लड़कियों की पहचान होती है, फिर पति के नाम से, फिर बाद में संतान के नाम से फलाने की मम्मी। तो ये जो है, अब आज के युग में महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें अपना नाम
1: उनके
0: खुद
1: नाम से पहचाने
0: नाम से पहचाना जाए, उन्हें
1: जी।
0: अपना सम्मान खुद मिले, चाहे बेटी हो, बहन हो, पत्नी, बहू, माँ, जैसे अनेक रिश्ते वे निभाती हैं। इन रिश्तों से उसे प्यार और सम्मान तो मिलता है, लेकिन इन रिश्तों के बीच उनकी अपनी पहचान कहीं गुम हो जाती है। एक महिला की पहचान केवल किसी की पत्नी, बेटी, बहू के रूप में नहीं, बल्कि उसके अपने नाम और व्यक्तित्व से भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने ममता जी। और हमारे समाज में अक्सर विवाह के बाद महिला की पहचान उसके पति के नाम से होने लगती है। कई बार उनकी उपलब्धियां, उनकी प्रतिभाएं भी परिवार के रिश्तों के पीछे छिप जाती है, जबकि उन्होंने अपनी शिक्षा, मेहनत और संघर्ष से जो पहचान बनाई उसका श्रेय और सम्मान उसके अपने नाम के साथ जुड़ना चाहिए। और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जैसे शिक्षा कह लीजिए, चिकित्सा, विज्ञान, प्रशासन, खेल, कला, साहित्य, व्यापार और राजनीति जैसे अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। वे अपने कार्यों से परिवार और देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसी महिलाओं को उनके

0: अपने नाम से पहचानना और सम्मान देना हम सभी की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अपना नाम केवल पहचान बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के अस्तित्व, आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रतीक भी है। जब किसी महिला को उसके नाम से पुकारा जाता है तो उसकी उपलब्धियों को उसके नाम से जब जोड़ा जाता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है और सम्मान की भावना भी मजबूत होती है। तो अमूमन यही कहा जाता है ना कि जैसे पति का नाम लेकर उनकी वाइफ, या जब दोनों, जबकि कई बराबर से प्रतिभाशाली हैं और बराबर से उनका करियर आगे बढ़ रहा है, कई बार महिलाएं दो कदम आगे भी होती हैं अपने पति से, तो भी उनकी वाइफ के नाम से ही उन्हें पुकारा जाता है, उनके नाम से उन्हें नहीं जाना जाता है। ये कहीं उनके दुख का सबब भी होता है।
0: पर इसका अर्थ ये नहीं ना ममता जी कि महिला अपने पारिवारिक रिश्तों से दूर हो जाए, वो अपने सभी रिश्तों को बड़ी ही गरिमा के साथ निभाते हुए अपनी अलग पहचान रखना चाहती है।
1: सही कह रहे हैं। और रिश्ते जीवन को सुंदर भी तो बनाते हैं, लेकिन अपनी पहचान जीवन को अर्थ देती है। अब जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा काम करें, वो अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार कोई भी क्षेत्र चुन सकती हैं महिलाएं। शिक्षा है, संगीत, लेखन, कला, व्यवसाय, समाज सेवा, खेल या कोई और हुनर, इन सब के लिए खुद को कोशिश भी करनी पड़ती है कि महिलाएं अपनी पहचान खुद बनाएं। कई बार कुछ महिलाओं को एक सहारे की हमेशा जरूरत होती है, अमर बेल के रूप में ही जाने जाने में उनको भी सुख मिलता है कि वो अपने
0: मैं
1: पति
0: डरती
1: के,
0: है।
1: हाँ पति के साथ, मतलब पति के नाम से ही जाना जाना अच्छा लगता है। जबकि अगर उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर प्रतिभा है, तो खुद अपना रास्ता चुने और अपने उस चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़े।
0: और जब कोई महिला अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करती है तो उसके परिवार के साथ साथ उसका अपना नाम भी सम्मान से लिया जाता है। यही आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की सच्ची मिसाल है। आजकल बहुत सारी महिलाएं विवाह के बाद भी उन्हें उनके मायके के नाम से पहचानने की इच्छा रखती है। इस बात को लेकर परिवार के लोगों ने भी उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें उनके नाम से पहचानने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि थोड़ा अभी जमाना बदल रहा है, आजकल की जो युवतियां हैं वो अपना मायके का ही नाम रखती है अपने सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स में, तो उन्हें उन्हें इस बात को लेकर रोक टोक नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें करते हैं। सही बात है। अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें करते हैं।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और बात हम कर रहे थे कि स्त्रियों को उनके पहचान से, उनके नाम से जाना जाना चाहिए, मतलब उनके नाम से उनकी पहचान होनी चाहिए। हमारे बहुत कम श्रोताओं ने इस मुद्दे पर लिखा है और जिन्होंने लिखा उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा रहे हैं। और ये तो अनुभव की बात है कि आपने कहाँ कहीं इस तरह के रिश्तों को देखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि शादी विवाह के बाद बेटी की पदवी बदल जाती है, न कि नाम। जैसे कि कन्या का नाम शीला है तो विवाह के बाद सरनेम बदल गया, यहाँ हुआ तो उसका नाम शीला ही रहेगा, लेकिन पदवी दीक्षित की जगह, मतलब अगर पांडे परिवार है तो पांडे हो जाएगा। ये वैदिक परंपरा के अनुसार पाणि ग्रहण संस्कार के परिणाम से ही होता है, न कि अपने मनमर्जी से। ये दो के एक होकर ही जीवन जीते रहने की प्रक्रिया स्वरूप बंधन का द्योतक है, जिससे आपसी सहमति, सहयोग और सद्भाव बढ़ते रहने की बात है। तो यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, अगर आपसी सद्भाव सहयोग होता है तो आप उलट भी सकते हैं,
1: जी
0: है ना। तो ये हम लोगों की, ये आप अपने सोच की बात है
1: जी
0: कि हम कई बार चाह कर भी, मतलब अगर लड़कियां चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं महिलाएं, तो भी उनको हम एक दायरे में कैद करना चाहते हैं।
1: एक हमारी साथी ने लिखा है ममता जी, वो हम टिप्पणी पढ़ रहे हैं। नारी जब अपनी शिक्षा, हुनर और आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है तो अपने फैसले स्वयं लेना सीखती है, किसी विशेष क्षेत्र में नाम कमाती है, तब उसका नाम उसकी पहचान बनता है। रिश्ते नारी के जीवन को समृद्ध करते हैं, लेकिन उसकी पहचान केवल रिश्तों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज घर संभालने वाली महिला भी अपनी कला, पाक कला, लेखन, सामाजिक सेवा, राजनीति, ब्लॉगर या किसी हुनर के माध्यम से अपनी अलग पहचान के माध्यम से नाम कमा रही है।
0: हमारी एक और, हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि नारी की पहचान केवल रिश्ते से नहीं बल्कि उसके अपने नाम, व्यक्तित्व और उपलब्धि से होनी चाहिए। वो बेटी, बहन, पत्नी या माँ के होने के साथ साथ एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। उनके सपनों, विचारों और मेहनत को सम्मान मिलना चाहिए। जब नारी शिक्षा, आत्मविश्वास और प्रतिभा के बल पर अपनी पहचान बनाती है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन ये बातें हम अपने घर में करते हैं, लेकिन दूसरों के घर में करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन अपने घर में जब बारी आती है तो हम
1: पीछे
0: अपने
1: हटने
0: पीछे हट
1: लगते
0: जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं, ठीक है, जैसी परंपरा
1: जो
0: चली आ
1: चल रहा
0: रही
1: है
0: है।
1: वो अच्छा है।
0: जी
1: एक सखी ने लिखा है ममता जी कि नारी की पहचान बने उसका अपना नाम, ये विषय रोजमर्रा के विषय से अलग लगा, मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगा। अक्सर नारी को या तो पति के नाम से या पिता के नाम से जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नारी की पहचान उसका अपना नाम होना चाहिए, इसका अपना एक आत्मसम्मान होना चाहिए। अक्सर होता है कि हम पति के नाम से नारी को जानते हैं, एक नारी की पहचान उसके अपने नाम से होना चाहिए, उसके कर्मों से होना चाहिए और उसके अपने स्वभाव से होनी चाहिए, ना कि उसके पति, पिता या परिवार के स्वभाव या परिवार के रहन सहन के तरीकों से होना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: सही कहा। तो अगर इन्हें विषय अच्छा लगा तो इस मुद्दे पर हम कभी और चर्चा करेंगे, और तब हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। फिलहाल एक गाना

0: पेंगेस्ट फिल्म का ये गाना था और बात चल रही थी गाने से पहले नारियों की पहचान की। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल की नारियां तो आगे बढ़ रही हैं और अपने नाम से पहचानी भी जा रही हैं, चाहे वो खेलकूद हो या फिर आकाश में उड़ना हो, ट्रेन चलाना हो। नारी की सबसे सुंदर पहचान सिर्फ किसी रिश्ते से नहीं, उसके अपने नाम से होनी चाहिए। बेटी, पत्नी, माँ, बहन और भी बातें इन्होंने लिखी है जो हम पहले कर चुके हैं।
1: और अब इतना अच्छा विषय है तो क्यों ना एक मिठाई की बात हो जाए।
0: बिल्कुल, वो
1: तो
0: तो कौन सी
1: काजू
0: मिठाई।
1: कतली बनाने की सामग्री लिखकर भेजी है एक श्रोता ने। काजू 2 कप साबुत या टुकड़े में, चीनी 1 कप, पानी आधा कप, देसी घी आधा छोटा चम्मच, इलायची पाउडर, गुलाब जल आधा छोटा चम्मच। काजू कतली बनाने के लिए काजू का पाउडर बनाएं, काजू को मिक्सी के जार में डालें, मिक्सी को लगातार ना चलाएं, इसे पल्स मोड पर रुक रुक कर कुछ सेकंड के लिए चलाएं ताकि काजू तेल ना छोड़े। पीसे हुए पाउडर को बारीक छन्नी से छान ले, जो मोटे टुकड़े बचे उन्हें दोबारा मिक्सी में पीस कर छान ले। चाशनी तैयार कर, एक भारी तले की कढ़ाई में चीनी और आधा कप पानी डाले, मध्यम आंच पर चीनी को पूरी तरह घुलने दे और चाशनी को 3 से 4 मिनट तक पकने दे। चाशनी की एक तार की कंसिस्टेंसी, यानी एक तार बनाना है, उसे चेक करे। अब मिश्रण पकाए, गैस की आंच धीमी करे, छना हुआ काजू पाउडर और धीरे धीरे चाशनी में डालते जाए, इसे लगातार चलाते रहे ताकि गांठे ना पड़े। मिश्रण को तब तक पकाए जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और कढ़ाई ना छोड़ने लगे, लगभग 5 से 6 मिनट तक। अब इसमें थोड़ा सा घी और इलायची पाउडर डालकर गैस बंद कर दे। अब इसको गूंथना है, मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दे ताकि आप इसे छू सके। इसे बटर पेपर या चिकनी प्लास्टिक शीट पर रखे और हल्के हाथों से तब तक मसले जब तक चिकना और आटे जैसा ना, डो जैसा ना हो जाए। बेलन में थोड़ा सा घी लगाकर इसे अपनी पसंद की मोटाई में बेल ले। शीट को पूरी तरह से ठंडा होने दे, उसके बाद चाकू की मदद से डायमंड शेप में काजू कतली काट ले और खिलाए।
0: क्या बात है। तो भाई ये मिठास घुली रहे और इसी मिठास को घोलते हुए हम एक, हमारे पास टिप्पणी आई, हमारे आकाशवाणी परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने टिप्पणी की है कि आज का ये प्रोग्राम, बल्कि इस ट्रांसमिशन के लिए पूरा लिखा है इन्होंने और टिप्पणी भेजी है कि प्रोग्राम बेहतर जा रहा है। तो शुक्रिया अदा करते हैं उनका और आभार व्यक्त करते हैं। अब क्या किया जाए, कुछ बोले बतिया या गाना सुनवाए?
1: आप सुनवा दे,
0: सुनवाते हैं।
2: नहीं,

0: ये आनंद फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज, गुलजार के बोल थे, सलील चौधरी का संगीत था। और अब जरा घड़ी की ओर देखिए कि हम अब कुछ बोले बतियाए नहीं, घड़ी यही कह रही है, ना ही हम गाना सुनवा सकते हैं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार को जिनका सफर थिएटर की सादगी से शुरू हुआ, अभिनय के विभिन्न रंगों में घुलकर डबिंग की अद्भुत दुनिया का हिस्सा बना। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हिंदी और बांग्ला सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी, टेलीविजन पर भी अपनी जगह बनाई और OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी वो नजर आ रहे हैं। और आज बातों का सिलसिला शुरू करते हैं अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता से। तो जॉय सेन गुप्ता जी, विविध भारती की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं विविध भारती से फिर से जुड़ पा रहा हूँ, जो एक तरह से मेरी जड़ें जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई है, मेरी सांस्कृतिक जड़ें जिसे कहते हैं
1: जी।
2: मेरी सारी मेमोरीज जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। उसके इन्फ्लुएंस से ही जिसे कहते हैं कि मेरे गहन मन में कई तरह की चीज़ों का उपज हुआ, चाहे वो हमारे क्लासिकल दौर हो चाहे फोक का दौर हो, वो सब मुझे ऑल इंडिया रेडियो से ही मिला था। और नाटक ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती में एक जमाने में बहुत सारे रेडियो नाटक खेले जाते थे।
1: जी जी।
2: उसने जो मेरे सेंसेस पे जो काम किया था वो नाटक सुन सुन के दोपहर को वो नाटक खास करके रविवार को सुनाते थे। मतलब उसके जरिए ही मैं कह सकता हूँ बचपन से मेरे इमेजिनेशन को जो है एक बहुत बढ़िया एक धक्का मिला
1: जी।
2: था।
1: विविध भारती तो खैर सुरीली धड़कन है ही
2: जी।
1: और अच्छा लगा आप विविध भारती के साथ जो आपकी यादें हैं उससे शुरुआत हुई है।
2: जी।
1: शुरुआत करते आपके बचपन की, कहाँ कहाँ शुरुआत हुई ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि हमने सुना कि आपके पिताजी की नौकरी के चलते काफी सारी जगह बदली है।
2: जी, जी,
1: तो कैसे शुरुआत हुई?
2: पैदा तो मैं कलकत्ते में हुआ
1: जी।
2: उस जमाने में मेरी माँ हर शाम को हारमोनियम निकाल के रविंद्र संगीत, नजरुल गीत प्रैक्टिस करती थी। मेरे पिताजी जोर से अपने कविताएं रिसाइट करते थे, चाहे वो बंगाली में हो चाहे इंग्लिश में, वर्ड्सवर्थ और कीट्स हो। घर में लोग जब आते थे तो बहुत डिबेट होते थे, चाहे वो माइथोलॉजी पे हो, रामायण महाभारत पे हो या राजनीति पे हो, स्पोर्ट्स पे हो। चारों तरह स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा सिलसिला था उन दिनों, बहुत स्पोर्ट्स खेला जाता था। और जैसे मैंने कहा, बाहर जो है जो चहल पहल, राजनीतिक चहल पहल वो चली रही थी। तो उस दौर में मैं पैदा हुआ, वो सारे सेंसेस मेरे अंदर आ गया। और कलकत्ता से पापा का तबादला हो गया दिल्ली
1: जी।
2: छुटपन पे, मैं जब 6 साल का था तब दिल्ली चले गए। तो कलकत्ते के इस सांस्कृतिक दौर से, जहां राजनीति को आप संस्कृति से कभी अलग नहीं कर सकते, वहां से हम दिल्ली पहुंचे। लेट 70 के दशक में थोड़ा अलग था, कलकत्ते से काफी अलग था,
1: बिल्कुल
2: वहां का कल्चर भी बहुत अलग था और वहां की भाषाएं बहुत अलग थी। तो पूरे बंगाली कल्चर से हम जो उस कल्चर में आए, वहाँ पंजाबी कल्चर, वो भी जो पार्टीशन के बाद जो पंजाबी इधर आए थे वो कल्चर ज्यादा था। ये ठेठ पंजाब का कल्चर नहीं था। और हरियाणा का एक कल्चर था वहां पे, वर्किंग क्लास कल्चर जिसे हम कहते हैं। और एक कल्चर जो धीरे धीरे पीछे जा रहा था वो पुरानी दिल्ली का कल्चर, जहां पे आपको बहुत बढ़िया आपको संयम भी दिखता था, वहां पे पोएट्री का सिलसिला भी दिखता था, एक मिजाज था, वो पुरानी दिल्ली का कल्चर था। वो समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। पहले तो मैं अपने चारों ओर थोड़ा सा ये जो दिल्ली का जो टफनेस है ना, जो जो एक जिसे कहते हैं आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, डिफेंसिव होना पड़ेगा, वो दिखा मुझे। पुरानी दिल्ली का कल्चर में थोड़े बड़ा हुआ तो मैंने वो मेरा एक्सपोजर बढ़ा, जहां जिसे हम मीर गालिब का कल्चर कहते हैं
1: जी।
2: या लखनऊ से निकल के दिल्ली पहुंचने वाला खुसरो का कल्चर कहते हैं, वो कल्चर से भी मैं वाकिफ हुआ। तो मेरा बचपन ये दो स्रोतों में बहते हुए निकला।
1: फिर नेपाल भी कुछ वक्त
2: फिर नेपाल फिर मैं जब क्लास 5 में था तो पापा का तबादला नेपाल हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस था
1: जी।
2: वो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनका काम ही था इकोनॉमिक एनफोर्समेंट के जरिए काम करना। तो नेपाल जो है वो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था, तो पापा का वहां तबादला हुआ क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा उनको काम भी करना था। तो मैं वहां पे इंडियन एम्बेसी के स्कूल में पढ़ता था, जो कि सेंट्रल स्कूल कहते हैं। छोटा सा स्कूल था, एक क्लास में सिर्फ 18 बच्चे थे, तो संगत बहुत अच्छी हुई, क्योंकि बड़े स्कूल में बहुत सारे बच्चों के बीच में आप खो जाते हैं, यहाँ बहुत कम बच्चे थे। तो एक जो है अपनापन बन गया, टीचर्स का अटेंशन वो ज्यादा दे पाते थे हर बच्चे को। और यहां से मेरा नाटक का सिलसिला बहुत अच्छा शुरू हुआ, क्योंकि नाटक मैंने उससे पहले भी किया, मतलब मैंने लोअर केजी से ही शुरू किया था, जब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा जो अंदर का जो

0: एक शर्मिला जॉय है वो कहीं छूट जाता है पीछे जब मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ, मुंह में कुछ रंग लगा लेता हूँ और स्टेज पे जाता हूँ। ये मुझे लोअर केजी से ही मुझे
1: एक
0: कुछ
1: ये
0: सुने।
1: स्कूल का प्ले भी मुझे कुछ सुना है मैंने,
0: जी
1: उस
0: जी
1: बारे में
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: बताएं,
0: तो उस
1: दिलचस्प की
0: समय
1: बात है
0: मैं कॉन्वेंट स्कूल में था कलकत्ते में, दमदम
1: जी।
0: में, हावर्ड मेमोरियल करके। तो वहां पे ऑब्वियसली क्रिसमस के आसपास नेटिविटी प्लेस होते थे, तो मुझे जिहोवा का किरदार दिया गया, मतलब जीसस क्राइस्ट के पिताजी का। कंबल पहनाया गया, दाढ़ी लगाई गई और सर पे साफा बांधा गया, लाठी दे दी गई। तो मुझे जहां तक याद है, मतलब मेमोरीज ही हैं, कि मैं जब वो सब कर रहा था तो टीचर्स मेरे मम्मी को कह रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बाकी बच्चों को बताना पड़ता है, ये तो अपने आप ही बहुत चीजें कर जाता है। तो मुझे वो याद है वो वाक्या, कि मैं वैसे मैं बहुत शर्मिला था। क्लास में अगर मुझे कुछ प्राइज भी मिलता था, मेरा नाम लेते थे, तो मैं खड़ा नहीं होता था इस डर से, शर्म से, कि मुझे अपनी शक्ल दिखानी होगी सबको। इतना शर्मिला लड़का कभी नाटक कर सकता है? लेकिन मजे की बात यह है कि शायद जिनके अंदर झिझक हो वो वेट कर रहे हैं कि किसी मीडियम के जरिए वो अपने आप को खोल पाए। तो
1: बिल्कुल।
0: नाटक मेरे लिए था वो एक्सपोजर जो है। और लेकिन हाँ, स्टेज पे जाके मैंने अपने मम्मी को सामने देखा तो शर्मा के मैंने अपनी जीभ बाहर करके मैं खड़ा हो गया। वो शुरुआत थी मेरी। लेकिन नेपाल में चल के, खास करके हमारे क्लास प्लेस भी होते थे, जो कि इंटर हाउस प्लेस होते हैं, क्लास के अंदर के प्रोग्राम्स होते थे, और एनुअल प्रोग्राम होता था। और इन दिनों मेरा जो है साहित्य के साथ बहुत अच्छा संबंध हो गया था। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत छोटपन में मेरे हाथों में, बच्चों के ही सही लेकिन साहित्य दिया था, बड़ों के साहित्य को, मतलब जो लिटरेचर कहते हैं उसको भी, ट्रांसलेटेड वर्क्स मुझे पकड़ाए थे, चार्ल्स डिकेंस हो, या हमारे बंगाली में बहुत राइटर्स हैं, रहे हैं, बिमल मित्रा, बिमल कौर, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, इनके लिटरेचर हो, अंग्रेजी लिटरेचर हो, फ्रेंच लिटरेचर हो, ये सारे उन्होंने ट्रांसलेटेड मुझे दिया था
1: जी।
0: बंगाली में। हाँ, मैं वो पढ़ता रहता था, बच्चों का शेक्सपियर मैं बचपन से पढ़ना शुरू किया। तो इससे मेरे अंदर का जो मेरी कल्पना शक्ति एकदम उजागर हो गई। मैं ये सब किरदारों को आसपास देखता था, मैं उनके साथ एडवेंचर पे जाता था, मैं पूरी दुनिया घूम लेता था साहित्य के जरिए। अगर मैं किसी वाइकिंग के ऊपर कोई किताब पढ़ रहा हूं तो मैं वाइकिंग के साथ उनके जहाज पे पूरी दुनिया घूम रहा हूं, एडवेंचर कर रहा हूं। तो ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, किताब। और मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो था,
1: बिल्कुल।
0: तो किताबें दोस्त बन गई, और फिर नाटक, ये लिटरेचर से नाटक की तरफ जिसे कहते हैं। मैंने खुद अपने हाउस प्लेस के लिए नाटक लिखे जो मैंने पढ़े थे किताबों में। तो अरेबियन नाइट्स में समझ लो कोई किस्सा पढ़ा, उसी में से मैंने कोई नाटक का रूप दिया बच्चों का, और उसको डायरेक्ट भी कर दिया मैंने। तो इस तरह से मेरा नाटक का सिलसिला स्कूल टाइम में, आप कहते हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में जाके बहुत एक्टिव हो गया।
1: वहीं से एक दिशा मिल गई कि इस तरफ ही जाना
0: हाँ,
1: है।
0: और एनुअल डे में नॉर्मली सीनियर स्टूडेंट्स को मौका मिलता था, तो मेरे अंदर एक जिद थी कि मैं भी एनुअल डे में परफॉर्म करूंगा। तो मैं खुद ब खुद नाटक बनाने लग गया। मैंने कुछ नाटक उठाया, वन एक्ट प्ले, और एक दो दोस्तों को पकड़ा, मैंने डायरेक्ट किया, खुद ही परफॉर्म किया, और जाके मैंने वो दिखा दिया। हमारे जो कल्चर कोऑर्डिनेटर होते थे उनको जाके दिखाया, वो इतने प्रभावित हो गए, बोले कि हाँ, इस साल हम सेकेंडरी स्कूल का भी एक नाटक एनुअल डे में रखेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ सेकेंडरी के स्टूडेंट्स का नाटक जो मैंने डायरेक्ट किया, मैं एक्ट कर रहा था, रखा गया। वो इतना अच्छा लगा उन लोगों को एनुअल डे के प्रोग्राम में भी, कि प्रिंसिपल ने कहा कि इसको हम अपने प्रेयर के ग्राउंड में भी इसको खेलेंगे। तो प्रेयर ग्राउंड में
1: असेंबली
0: सब
1: में।
0: स्टूडेंट के सामने मैंने उसको खेला, तो ऐसा शुरू हो गया। फिर मुझे याद है कि हम लोग घर घर जाके अपने SUPW के मोमबत्ती वगैरह जो बनाते थे वो बेचते
1: हाँ
0: थे,
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो बेचने जाते थे, तो कुछ लोग मेरे फादर के कलीग थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोले कि भाई मैंने तुम्हारा नाटक देखा एनुअल डे में, हाँ, मैं पागल हो गया, तुम एक काम करो, पापा को मत बताना, जब बड़े होंगे तो सीधा मुंबई चले जाना, बॉम्बे, बॉम्बे, उसे बॉम्बे कहते चले जाना।
1: जी।
0: मैंने कहा अंकल ये क्या कह रहे हो, मुझे तो पता नहीं ये सब क्या है। कहते नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ, याद रखना, बड़े होंगे तो बॉम्बे चले जाना। मैंने कहा अच्छा, कहते हाँ। तो मेरे सर पे ये जो है बीज बो दिया,
1: बो दिया गया
0: और
1: था
0: तब मैं
1: बिल्कुल।
0: क्लास 8 में था शायद। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसा भी है कुछ, मतलब मेरे अंदर कुछ है जो मुझे काठमांडू से, दिल्ली नहीं, कलकत्ता नहीं, मेरे बॉम्बे
1: बॉम्बे
0: ले
1: भेजना
0: जाएगी।
1: चाहता
0: तो ये एक और सिलसिला था।
1: बिल्कुल।
0: फिर मैं दिल्ली वापस आया। दिल्ली में अब मैं सीनियर स्कूल में था, सीनियर स्कूल में भी मैं नाटक खेला। वहां पे भी मेरे इंग्लिश टीचर जो थे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी खास जो टैलेंट है इसको तुम नजरअंदाज ना
1: तो ये
0: करना।
1: नाटक जो है आपका पहला प्रेम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है
0: मेरा,
1: कि
0: हाँ
1: टेलीविजन फिल्म्स उसके
0: जी
1: आगे
0: जी
1: प्रायोरिटी आपकी जो रहती है वो शायद नाटक की रहती है
0: ये मेरा जीवन भर का अगर कोई प्रेमिका या प्रेम
1: एक।
0: है तो वो नाटक है। बाकी सब प्रेम प्रेमिकाएं तो छूट जाती हैं, रह जाती हैं, टूट जाता है दिल, लेकिन इसने ना दिल मेरा तोड़ा है ना ही मेरा पीछा छोड़ा है। तो

0: ये संबंध तो अभी तक चल रहा है।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: शुरुआत अगर करें तो एक थोड़े खुशहाल गाने से करते हैं, जो
1: बिल्कुल।
0: मेरे एक ऑप्टिमिज्म का गाना, मेरे फिलोसफी को दर्शाता है। वो देवानंद का मैं बड़ा फैन होता था, तो उनका एक गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसको अगर आप सुना दें, मेरा एक
1: सुनवाते हैं
0: पसंदीदा
1: गाना
0: गाना है।
1: हमारे श्रोताओं को आपकी पसंद का।
2: मैं जिंदगी

गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ न महसूस हो जहाँ न महसूस हो जहाँ मैं दिल को उस

0: बात चलिए नाटकों की, तो यूनिवर्सिटी में ही आपने जन नाट्य मंच से अब जुड़े, और उसके बाद थिएटर का जो सफर है थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो गया।
1: जी
0: नाम आता है बहुत बड़े दिग्गजों का,
1: जी
0: जिसमें इब्राहिम अलकाजी साहब का नाम आता है,
1: जी जी
0: और भी कई नाम आते हैं,
1: जी
0: तो उनके साथ जब आप जुड़े तो
1: जी
0: कैसा अनुभव, कुछ अलग अनुभव है वो,
1: कमाल
0: उसके बारे में कुछ बताएं।
1: कमाल।
0: अलग अलग
1: लो
0: मेथड्स कैसे हैं, अलग अलग
1: जी,
0: तरीके कैसे हैं सबके।
1: सबसे पहली बात तो यह है कि गुरुओं का बड़ा योगदान होता है समाज को बनाने में। एक गुरु आपके अंदर बीज बोता है, फिर उसमें पानी देता है, फिर फसल उगता है, फिर आप जाके जो आप सीखते हैं उस गुरु से उसको आप शेयर करते हैं, है ना?
0: बिल्कुल
1: जब वो शेयर करते हैं वो समाज में और आगे निकलता है, कुछ लोग और प्रभावित होते हैं और उस पथ पे चल पड़ते हैं। तो अगर आपके गुरु ने आपके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज डाले हैं, आपको सही मायने में एक अच्छे कल्चरल दिशा दिखाई है, तो आप भी उसी पथ पे चलेंगे और लोगों को दिशा दिखाएंगे और उस दिशा पे बाकी लोग भी चल पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज बहुत स्वस्थ हो जाता है। तो मेरे जिंदगी में जो गुरु आए, सफदर हाशमी हो, जिन्होंने मुझे जीवन दर्शन दिया कि दुनिया को कैसे देखना चाहिए, समाज को कैसे देखना चाहिए, किस नजरिए से देखना चाहिए, तो सबको समान तरीके से समझना और तोलने का जो गुण है उनसे मैंने सीखा। किसी इंसान और इंसान में कभी फर्क नहीं करना।

0: चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो चाहे उसकी चमड़ी अलग हो, दमड़ी अलग हो, धर्म अलग हो, उसका इनकम अलग हो, कुछ भी हो, कभी भी किसी इंसान में फर्क नहीं करना, सबको एक ही नजरिए से देखना, उसके बाद अपने आप को प्रस्तुत करना, उसके बाद उनसे जुड़ना, समानता की नजर से जुड़ना किसी के साथ भी। ये मैंने उनसे सीखा,
1: जी
0: तो वो बहुत काम आया मेरे, कि मेरे अंदर से जो विभाजनकारी जो एक पर्सनालिटी बन जाती है लोगों के अंदर, कभी वो घर से वैल्यू लेके निकलते हैं, कभी चारों ओर के इन्फ्लुएंसेस से लोग, हर कोई थोड़े विभाजनकारी बन जाता है,
1: जी
0: मेरी भाषा, हाँ, मेरी जात, मेरा धर्म,
1: मेरा
0: हाँ,
1: कल्चर
0: मेरा शहर,
1: जी जी
0: मेरा कल्चर, मेरा खान पान, मेरी आदतें, मेरी तरह के लोग क्यों नहीं, दूसरे तरह के लोग क्यों, वो लोग और हम लोग, ये फर्क उसी से आता है। मेरा देश सबसे महान, उसका देश सब नीचे गिनेंगे, ये जो ऊंच नीच विभाजन, ये सारी चीजें, ये इंफ्लुएंसेस होती हैं, बहुत सारी चीजें घर से निकलती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे चारों ओर से आती हैं, मीडिया से भी आती हैं। अगर आपको बहुत पहले ये नजरिया आपको मिल जाए, ये दुनिया को देखने का दर्शन आपको मिल जाए कि आपको कोई फर्क नहीं करना है, जब आप किसी के सामने अपने आप को प्रस्तुत करो, किसी से बात करो, किसी से जुड़ो, तो पहले समानता से जुड़ो,
1: जी
0: उसके बाद फिर आप तोलो कि हाँ इसमें ये कमी है, कैसे मैं इस कमी को दूर करूं और इसे ऊपर उठाऊं। तो हमारी जिम्मेदारी है किसी को ऊपर उठाना, किसी को नीचे गिराना नहीं।
1: बिल्कुल
0: ये जो दर्शन है मैंने सफदर से पाया, और अलकाजी साहब ने मुझे दुनिया में खूबसूरती को खूबसूरत तरीके से देखना सिखाया, कि आप कोई भी चीज को कैसे खूबसूरत बना सकते हो, उसके अंदर की खूबसूरती को कैसे निकाल सकते हो, निखार सकते हो, ये अलकाजी साहब से मैंने सीखा। चाहे वो साहित्य हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे थिएटर हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे कुछ भी हो, जिसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, सौंदर्य दर्शन आप कह लीजिए, आपके चारों ओर सौंदरता है, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा सौंदरता का प्रतीक है, आपके अंदर का अंदरूनी मन सौंदरता का प्रतीक है, साहित्य सौंदरता का प्रतीक है, कविता, पेंटिंग, थिएटर, ये सब सौंदरता का प्रतीक है, इनको उजागर करना है हमको, इनको समाज के सामने लेके जाना है, प्रकृति और कला, और एक साइंटिफिक नजरिए से, मतलब एक वैज्ञानिक सोच के साथ, आप किसी को भटकाएंगे नहीं, वैज्ञानिक सोच में क्या होता है, भटकाते नहीं है, आप सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये वैज्ञानिक सोच और ये कलात्मक सोच, सफदर और अलकाजी साहब के चलते मेरे अंदर बैलेंस बन गया था।
1: बिल्कुल।
0: और
1: और कहते हैं ना, थिएटर का मतलब जो पहला सबक सिखाया जाता है, सबको साथ में लेकर
0: जी
1: चलना,
0: जी
1: सिर्फ अपना नहीं सोचना, एक टीम वर्क,
0: जी
1: और सब कैसे संभलें
0: ये
1: वो
0: तो
1: चीज।
0: सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुश्किल ये होता है कि जब एक्टर होता है ना थिएटर में, तो वो ग्रुप में समा जाता है, ग्रुप थिएटर में वो फिलॉसफी लेके चलता है कि सबको साथ लेके जाना है, लेकिन खुद जब वो खड़ा होता है तो एक्टर वो सिर्फ अपने आप को देखता है, और तब उसे सिर्फ अपनी पहुंच, अपना रुतबा, है ना, अपना माइलेज, अपनी रोशनी, ये चाहिए उसको, तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो थिएटर का जो फलसफा है वो भूल जाता है, वो
1: बिल्कुल
0: कि सबको साथ लेके चलना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है, बल्कि हाथ देना है, उठाना है, अगर दूसरों को उठाओगे तो आप खुद भी उठोगे। थिएटर में हम ये सीखते हैं कि अगर आपका बगल वाला एक्टर कोई सीन खराब करता है तो आपका सीन भी खराब हो जाता है, क्योंकि आप उसी के साथ काम कर रहे
1: बिल्कुल
0: हो,
1: बिल्कुल
0: तो वो अच्छा करेगा तो आपका सीन अच्छा जाएगा, तो आप अच्छा काम करोगे, तो इसीलिए एक दूसरे को आप कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहते हो थिएटर में। लेकिन दूसरे मीडियम में जाके वो बाजारू हो जाता है, तो बाजार में क्या है कि हर कोई जो है अकेला दिखना चाहता है,
1: बिल्कुल,
0: अकेले खड़ा होना चाहता है,
1: मैं सबसे
0: तो
1: अलग।
0: हाँ, तो ये बाजार आपको सिखाता है कि आपकी अलग ब्रांडिंग है, आप ब्रांड हो, आप सब मिलके ब्रांड नहीं हो, आप अकेले ब्रांड हो, तो
1: बिल्कुल।
0: यहां जाके फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है।
1: यहां पर सुनते हैं आपकी पसंद का दूसरा गाना।
0: अब मैं थोड़ा जिसे गंभीर गाने की तरफ लेके जाता हूं,
1: जी
0: आज का जो दौर चल रहा है,
1: हाँ।
0: युवाओं के मन में जो सवाल चल रहे हैं, उससे जुड़ा एक गाना है, फिल्म प्यासा में, गुरुदत्त की फिल्म है, साहिर ने लिखी थी और एसडी बर्मन ने कमाल का जो है इसे सुर दिया था, वो है जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है,
1: सुनते
0: इसमें
1: हैं गाना।
0: जी।

0: अभी थिएटर की जैसे हमने बात की,
1: जी
0: 80s 90s से आप जुड़े
1: हाँ
0: हैं, नुक्कड़ नाटक भी किए हैं,
1: जी
0: थिएटर अभी भी कर रहे हैं,
1: जी जी
0: लेकिन अभी कुछ वक्त से, कुछ सालों से एक जो चेंज, एक परिवर्तन देखा है, वो है कि मेगा प्लेज करके थिएटर आ गया है,
1: जी जी
0: उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही साउंड इफेक्ट, एक लार्जर देन लाइफ अगर हम टर्म यूज करें
1: जी
0: तो वो
1: जी
0: यूज कर सकते हैं, तो कितना फर्क आया तब में और आज में? या हर किसी के अपना अपना एक जगह है, अपना स्थान है,
1: हर
0: सब
1: किसी का
0: पैरेलल
1: स्थान
0: चल
1: है,
0: रहे हैं?
1: क्योंकि ये तो पश्चिमी देश से आया है। होता यह है कि पश्चिम देश में अगर आप देखें, खास करके इंग्लैंड और यूएस में अगर आप देखें, तो इंग्लैंड में जो थिएटर डिस्ट्रिक्ट है उसको वेस्ट एंड कहते हैं,
0: जी
1: और यूएस में न्यूयॉर्क थिएटर कैपिटल है और वहां पे ब्रॉडवे कहते हैं।
0: जी
1: जब आप वेस्ट एंड या ब्रॉडवे कहते हैं तो आप बड़े नाटक की बात करते हैं, म्यूजिकल्स की बात करते हैं, जहां बड़ा होता है। जब उससे हटके बात होती है, जो जिसमें थोड़ा सा अपनापन होता है, पर्सनल एलिमेंट होता है, उसको हम ऑफ ब्रॉडवे कहते हैं।
0: अच्छा
1: और जब वहां से और हटके बहुत एक्सपेरिमेंटल काम होता है, रिस्की काम होता है, चीजों को परखने का काम होता है, उसको हम ऑफ ऑफ ब्रॉडवे बोलते हैं। वही वेस्ट एंड में भी है, वेस्ट एंड है, ऑफ वेस्ट एंड है, ऑफ ऑफ वेस्ट एंड है। तो वेस्ट एंड ऑफ ब्रॉडवे में बड़ा काम होता है, वहां पर बड़े स्टार्स आते हैं जिनको फिल्मों में भी देखते हैं। वहां पे म्यूजिकल में चकाचौंध टेक्निकलिटीज आपको दिखती हैं, सीन्स ऐसे बदलते हैं आपको पता भी नहीं चलता, इस तरह के सेट्स आते हैं, इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं, आप जो है उड़ जाते हैं, एकदम होशो हवास उड़ जाता है आपका, और आप उसके लिए बहुत डॉलर्स और पाउंड्स खर्च करते हैं। ठीक है, उससे पूरी थिएटर इंडस्ट्री चलती है।
0: जी
1: तो उसका कुछ एक हिस्सा ऑफ ब्रॉडवे पे, ऑफ वेस्ट एंड के पास भी आता है, और कुछ हिस्सा ऑफ ऑफ वेस्ट एंड में भी आता है। तो बात करने का जरिया होता है, जैसे नुक्कड़ नाटक में आप सड़क पे बात करते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं ये बात मुझे सड़क पे ही मैं कर सकता हूं, ये हॉल में करूंगा तो कुछ चुनिंदा लोग आएंगे जो टिकट खरीद के देखेंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो सफदर कहता था कि अगर वो नहीं आते तो हमें उनके पास जाना चाहिए, तो आप वहां जाके ये करते हैं।
0: जी
1: फिर एक्सपेरिमेंटल हमारे यहाँ पे भी थिएटर होता है, जैसे दिल्ली में था श्रीराम सेंटर बेसमेंट, यहाँ पे भी है, पृथ्वी है, एनसीपी है। तो एक्सपेरिमेंटल स्पेस में कम दर्शक होते हैं, लेकिन वो दर्शक बड़े ही रोचक दर्शक होते हैं, वो सोच और समझ के साथ आते हैं कोई बात को सुनने। तो आप जब वहां पे मंटो का नाटक करते हैं, मतलब मंटो की बात को रखते हैं, प्रेमचंद की बात को रखते हैं, अंधा

0: करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो बड़े रोचक तर्क के साथ उसको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं। फिर आप बड़े हॉल में जाते हैं, यहाँ पे जमशेद भाभा ऑडिटोरियम है या एनएमएससीसी में बड़ा वाला हॉल है, तो वहां पे जो लोग आते हैं वो वित्तवान लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट चाहिए, वो वेस्ट की तरह चाहिए उनका एंटरटेनमेंट, तो वहां पे चकाचौंध दिखता है। अगर उस चकाचौंध के अंदर कुछ अच्छी बात भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो कम से कम वो इस बात के लिए खुश है कि मैंने जो पैसा खर्च किया है उसके बदले में मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है और मेरे सारे सेंसेस को इन्होंने एंटरटेन किया है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं,
1: अपनी अपनी जगह,
0: अपनी अपनी जगह है। आप बड़े चीज के जरिए बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, जैसे ला मिजराबल करके एक बहुत फेमस म्यूजिकल होता है वेस्ट एंड ब्रॉडवे में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर है, लेकिन म्यूजिकल है, उसमें कमाल कमाल के गाने हैं, क्रांति के बारे में है, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। लायन किंग बहुत बहुत फेमस म्यूजिकल है जो वहां पे चलता रहता है, तो लायन किंग में भी तो आप बात क्या कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं, आप फलसफा दे रहे हैं ट्रेडिशन के बारे में, एथिक्स के बारे में, है ना। तो आप बड़ी चीजों के जरिए भी अच्छी बातें कह सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप संस्कृति की बात करते हो तो संस्कृति सिर्फ मनोरंजन पे निर्भरशील नहीं होता, मनोरंजन एसेंशियल होता है, मनोरंजन के बिना संस्कृति नहीं है, मनोरंजन तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, उसके अंदर से कोई बात निकल के आती है जो आपकी सोच और समझ को या तो बदलती है या उसको और उजागर करती है, तो आप के अंदर एक नई चेतना भर देती है, चाहे छोटे तौर पे हो लेकिन भर देती है कि आप हॉल से बाहर आए तो थोड़ा सा सोचे और कहीं आपका नजरिए में थोड़ा सा फर्क आए, आप थोड़ा सा साफ देखने लगे, आप चीजों को थोड़े संयम के साथ, संतुलन के साथ देखने लगे, ये अच्छी संस्कृति की जो है सीख है।
1: जी जी, म्यूजिकल ड्रामा की बात चलिए तो उसमें भी अपने ताज एक्सप्रेस करके कुछ म्यूजिकल ड्रामा से आप रिलेटेड हैं।
0: जी जी जी, अभी भी चल रहा है ना, अभी 23-24 को पृथ्वी में शो है लेडी संगीत करके।
1: अच्छा,
0: वो भी म्यूजिकल ही है।
1: अच्छा, हाँ,
0: वो उसमें कहने को तो लेडी संगीत है तो लोग लेडी संगीत सुनने आते हैं बहुत शुभा मुद्गल का म्यूजिक है उसमें, बहुत बढ़िया म्यूजिक आता है, फोक और क्लासिकल म्यूजिक आता है उसके अंदर, लेकिन उसके जरिए हम बात करते हैं जेंडर इश्यूज के ऊपर।
1: अच्छा,
0: हाँ, नारी, नारी की जगह, शादी, समाज में शादी की क्या जगह है, उसमें बात करते हैं, और हमारे अपने अंदर के अवचेतन मन के बारे में, हमारे अंदर जो नारीत्व छुपा हुआ है उसको भी हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बढ़िया नाटक है, लेकिन म्यूजिकल है। और ताज एक्सप्रेस जो है उसे आप कहते हैं बॉलीवुड म्यूजिकल, जैसे बॉलीवुड म्यूजिकल होता है ना कि एक लव स्टोरी होती है, उसके अंदर आइटम्स की तरह एक एक गाना आता रहता है, और वो जैसे वो स्टोरी आगे जाती है, लड़का लड़की भाग जाते हैं और गाने आते हैं, फिर पुलिस आ जाती है और गाने आएंगे, फिर अंडरवर्ल्ड या विलेन आएगा तो और गाने आएंगे, फिर वो बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे, कैसे गाने आएंगे, जो बॉलीवुड में का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का वो म्यूजिकल था ताज एक्सप्रेस।
1: रेडियो ड्रामा से भी अब जुड़े, बीबीसी के लिए आपने रेडियो ड्रामा किया, कितना अलग है वो और थिएटर पे करना?
0: देखिए, ग्रामर अभिनय का तो एक ही रहता है, इमोशंस, करेक्ट, इमोशंस और आइडियाज को आपको प्रोजेक्ट करना है
1: जी,
0: लेकिन प्रोजेक्शन में आपका जो तकनीक है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जब आप नुक्कड़ में करते हैं यानी कि सड़क पे करते हैं तो आवाज का प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, पूरे शरीर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, आप लोग जब देख रहे हैं उस चकाचौंध रोशनी में, इतनी भीड़ में, इतने शोर शराब के बीच में, तो आपका शरीर का खेल कमाल होना चाहिए पर आवाज कमाल होनी चाहिए। जब आप एक हॉल के अंदर करते हैं जैसे प्रोसिनियम थिएटर करते हैं तो थोड़ा कंसंट्रेशन होता है स्टेज के ऊपर, स्टेज लाइट होता है, ऑडियंस अंधेरे में होती है तो आप साफ दिखते हैं, तो शरीर का बहुत ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आवाज का एक प्रोजेक्शन होता है लेकिन नुक्कड़ की तरह नहीं, वो कम हो जाता है, तो उसके अंदर गांभीर्य आ जाता है। जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है, तो बहुत बड़े बड़े अभिनेता सिनेमा में रहे हैं जो बहुत कम बोलते हैं। दिलीप कुमार को अगर आप फिल्मों में देखें तो उनकी आंखें बोलती थी, अमिताभ बच्चन डायलॉग के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनकी आंखें बोलती थी,
1: बिल्कुल,
0: है ना, तो आंखों से आप पकड़े जाएंगे। ओम पुरी ने आक्रोश में किरदार किया था जिसमें पूरे फिल्म में उनका कोई एक लाइन नहीं है, एक लाइन नहीं, वो जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं, उनपे अपने बीवी को मारने का इल्जाम है जबकि वो निर्दोष है एक्चुअली, तो लॉयर उससे जब भी मिलने आता है वो एक बात नहीं करते, लेकिन उन आंखों से उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनकी आंखें बता देती है। अब तो सिनेमा में ही है और रेडियो में पूरा ही वाचक, सब कुछ ही ऑडियो है, सिर्फ आवाज से आपको समझ में पड़ेगा कि ये आदमी कहां है, किस परिप्रेक्ष्य में है, किस मूड में है, कहां से आया है, कहां जा रहा है, जो बातें कर रहा है उसके पीछे क्या अवचेतन मन में क्या चल रहा है, सब टेक्स्ट सब कुछ उसकी आवाज से निकलनी चाहिए, तो आवाज पे ही पूरा काम करना पड़ता है। फिर सारे इमोशंस को आवाज के जरिए, पिच के जरिए,

0: और आपको एक अंदाजा देना पड़ता है आवाज के जरिए कि आप किस स्पेस में हैं।
1: बिल्कुल
0: ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्पेस में हैं। तो वो सब जो है, किरदार का क्लास क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सब आवाज से होता है। तो सोचिए, जब आप आंख बंद करके भी आप सुनेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये रेडियो प्ले की खासियत
1: बिल्कुल, यहां पर आपकी पसंद का गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं।
0: जी। एक बढ़िया गाना है जिसमें क्रांतिकारी सोच भी

0: तो वो गाते हैं कि ये सुबह हम ही से आएगी,
1: बिल्कुल
0: तो ये जो ये सुबह कभी तो आएगी, ये सुबह हम ही से आएगी, ये गाना जो है मुझे बेहद पसंद है
1: और गीतों के साथ जो आप डिटेलिंग दे रहे हैं
0: जी
1: वो सुनने में और मजा आ रहा है।

0: बात करते हैं फिल्मों की, हिंदी फिल्मों की। तो लेट 90s में आपकी
1: जी
0: शुरुआत हुई हिंदी फिल्म से,
1: जी
0: 1084 की माँ,
1: जी
0: जो कि काफी पॉपुलर रही, को
1: चर्चित रही
0: चर्चित रही कह सकते हैं, बिल्कुल, और पहचान मिली एक।
1: जी जी
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ?
1: मैं आपको सच बताऊं तो ये बड़ा अजीबोगरीब जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन है। मैं 80 के दौर में जब स्कूल में रहते हुए मैं भारतीय पैरेलल सिनेमा की तरफ, सीरियस सिनेमा की तरफ मेरा झुकाव हो गया था। अमिताभ बच्चन के दौर से निकलकर मैं इस दौर में जा रहा था
0: जी
1: जहां फिल्मों में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, शवाना जी, स्मिता पाटिल, दीप्ति जी, इन लोगों का दौर चल रहा था अभिनय के क्षेत्र में। और डायरेक्शन में श्याम बेनेगल, सैयद मिर्जा, कुंदन शाह, केतन मेहता, ये सब जो है धूम मचा रहे थे। मैं वैसे भी थोड़ा बहुत आदर्शवादी था तो गोविंद निलानी मेरे मन में बैठ गए। उसके बाद मैंने उनकी आगे फिल्म देखी अर्धसत्या, जो करप्शन और फुल पुलिसी व्यवस्था के ऊपर थी। फिर उनकी फिल्म आई आघात, जो ट्रेड यूनियन के ऊपर थी। उसके बाद उनकी फिल्म आई तमस, जो पार्टीशन के ऊपर थी। एक के बाद एक और मेरे होश हवास उड़ गए। मुझे अगर कभी मैं सिनेमा में मौका मिला तो मैं ऐसे डायरेक्टर या इनके साथ ही करना चाहूंगा कम से कम एक काम या शुरुआती काम जो भी है।

0: तो फिर जब मैं थिएटर में पढ़ाई कर रहा था, थिएटर सीख रहा था हल्का हिसाब से, तो उस समय बॉम्बे आने का एक बार मुझे मौका मिला था। तो मैंने बड़े मुश्किल से पता लगाया कि गोविंद निहलानी जो है महबूब स्टूडियो में मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं। तो मैं वहां पहुंच गया और मैं उनसे मिला, और वो मुझसे मिले भी। तो उनको जब पता चला मैं अलकाई साहब का स्टूडेंट हूं तो बड़े खुश हुए। पूछा मेरे नाटक के बारे में। मैंने जो नाटक किया था विरासत करके नाटक है, वराचिड़ी बिंदे, ये एलकुंचर की नाटक, वो उस पे वो एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे दूरदर्शन के लिए
1: अच्छा
0: जी, टीवी फिल्म। तो बोले कि मैं तुमको मैं इतला करूंगा अगर जब मैं ये बनाऊंगा। तो मैं अपने फोटो वोटो देखे, बड़े खुश होकर मैं सीना चौड़ा करके वापस आ गया दिल्ली और मेरे नाटक के सेक्शन में घुस गया। फिर बात भूल गया मैं, 2-3 साल गुजर गए। फिर जब फाइनली मेरा बॉम्बे आना हुआ और मैंने वहां नाटक करना शुरू किया, तो मेरे जो पहले नाटक का शो था वहां पे, ए विशेस फॉर हॉर्सेस करके एक नाटक, तो उसका शो देखने गोविंद निहलानी आए हुए थे, ये मुझे पता नहीं था।
1: अच्छा
0: मैं उसके बाद चंडीगढ़ चला गया वर्कशॉप लेने। मैं हर गर्मी की छुट्टी में चंडीगढ़ में बच्चों का वर्कशॉप लेता था। तो मैं ये सारी चीजें करता था, मतलब टेलीविजन भी करता था, थिएटर भी करता था, वर्कशॉप भी लेता था, ये सब मेरे चलता रहता था। पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में फोन आया गोविंद निहलानी के ऑफिस से।
1: अच्छा
0: पता नहीं उन्होंने कैसे पता लगाया कि मैं चंडीगढ़ में हूं, और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट ने फोन किया कि भैया जॉय सेन गुप्ता चंडीगढ़ में है, जरा पता करो, उनको बताओ कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करनी है।
1: जी
0: तो मैं मुंबई लौट आया, उनके वहां गया, उन्होंने कहा भाई मैं एक फिल्म बना रहा हूं जो महाश्वेता देवी की जो छोटी नॉवल है, नॉवेला 1084 के माँ के ऊपर है, उसके प्रोटैगनिस्ट के लिए तुमको मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने तुमका नाटक देखा, मुझे पसंद आया तुम्हारी पर्सनैलिटी, मुझे एक दो और लोगों ने कहा कि भैया इस लड़के पे नजर रखो, तो मैंने नजर रखा और तुम्हें याद किया, अब तुम ऑडिशन दो और देखते हैं कैसा आता है। तो एक बड़ा मुश्किल ऑडिशन लिया मैंने उनसे, 3 तरह के ऑडिशन, जिसमें कॉमेडी भी था, सीरियस भी था और इन्फॉर्मेटिव भी था, ऐसे 3 तरह के ऑडिशन के बाद मुझे चुना, और ऐसे फिल्म में चुना जो उस दौर को दर्शाती है जिस दौर में मैं पैदा हुआ, उस दौर में महाश्वेता देवी ने लिखा था, उस एक स्टूडेंट के बारे में जो मारा जाता है, मरने के बाद वो सिर्फ एक नंबर बन जाता है, लाशों का नंबर होता है, लाशों का
1: बिल्कुल
0: नाम नहीं होता। उसकी मां जब अपने बेटे को ढूंढने जाती है तो उसे लाश का नंबर बताया जाता है, वो कहती है सिर्फ नंबर कैसे हो गया, ये तो मेरा बेटा है व्रती। फिर उस नंबर के पीछे की सच्चाई को ढूंढने उसकी मां निकलती है कि वो कौन सा पक्ष है इस मेरे बेटे का जो मैं नहीं जानती थी। मेरा बेटा तो घर पे एक मध्यम वर्ग का अच्छा लड़का था, कॉलेज जाता था, पढ़ाई करता था, मेरे को हंसाता था, ये उसे पसंद था, वो था, ये चीज तो मुझे पता ही नहीं था कि पुलिस ने उसे क्यों गोली मारी। तो वो समझने के लिए निकलती है और फिर अपने बेटे के इतिहास के जरिए खुद उसके अंदर एक क्रांतिकारी भाव आ जाता है। तो माँ का भी एक ग्रोथ होता है इस फिल्म में, तो
1: बिल्कुल
0: इसीलिए वो 1084 जो नंबर है उसकी माँ।
1: उसकी
0: तो
1: बात
0: इसमें मुझे मौका मिला काम करने का। तो मेरा जो पर्सनालिटी है नुक्कड़ नाटक, ठीक है, मेरा जो जीवन दर्शन, दुनिया को देखने का नजरिया, जिस दौर में पैदा हुआ, वो सब कुछ इस फिल्म में मिला। तो एक तरह से आप कह सकते
1: फिर
0: हैं
1: से
0: कि एक,
1: जिया आपने
0: हाँ
1: उसे उस माहौल को
0: बताइए, एक पूरा कैसे एक कोइंसिडेंस है, लेकिन ये सारी चीजें एक जगह आ गई, महाश्वेता देवी, गोविंद निहलानी, मैं, मेरी को एक्ट्रेस नंदिता दास जो जन्नाट्य मंच में मेरे साथ काम करते थे,
1: जी,
0: हम लोग साथ नुक्कड़ नाटक करते
1: और
0: थे,
1: जया
0: और
1: भादुड़ी
0: जया जी,
1: जी और अनुपम खेर के
0: जी
1: साथ।
0: जी जी जी जी तो अनुपम खेर जो महेश भट्ट स्कूल ऑफ सिनेमा से आए थे,
1: जी
0: जया जी जिनकी शुरुआत सती इत्रे से हुई, और फिर ऋषिकेश मुखर्जी स्कूल ऑफ एक्टिंग से आए, तो ये सारे जो है एक जगह हम लोग आ गए।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: लगान का गाना है चले चलो बड़े चलो, वो आप जरूर सुनाइए क्योंकि उसके अंदर एक जोश है, होश है, वो सुना दीजिए इसमें
1: सुनते हैं गाना।
0: जी।

0: मैनिफेस्टेशन दरअसल सच होता है,
1: ऐसा ही
0: उस
1: लगा
0: चीज को
1: मुझे,
0: दिल से चाहो तो।
1: ऐसा ही लग
0: और
1: रहा
0: भी
1: है।
0: आगे भी हम बात करेंगे, आगे भी बहुत सारी चीजों में मैनिफेस्टेशन हुआ है
1: जी जी जी
0: आपका। तो अभी फिल्मों में आप आ चुके थे, उसके
1: जी
0: बाद भी आप टीवी पर भी काम कर रहे थे,
1: जी
0: तो
1: जी
0: कभी ऐसा नहीं लगा कि अब थिएटर कर लिया, फिल्मों में आ गया, अब टीवी छोटे पर्दे पे मैं क्यों करूं, ऐसा कभी भावना नहीं आई?
1: टीवी पे काम मैंने सिनेमा से पहले शुरू किया था।
0: अच्छा
1: मैं थिएटर से टीवी में मुझे मौका मिला था।
0: अच्छा
1: मैं टीवी में एंकरिंग कर रहा था, होस्टिंग कर रहा था, एक्टिंग भी कर रहा था, और मैं ठीक ठाक पैसे कमा रहा था। तो एक मध्यम वर्ग का वो एक्टर जिसका बाप एक सरकारी मुलाजिम था, जिसकी ना कोई सेविंग्स थी ना कोई प्रॉपर्टी थी, और जिसने अपने बच्चे के बारे में ये सपना देखा था वो आईएएस ऑफिसर बनेगा, समझ रहे हो, है ना, तो जिसमें जिंदगी में सिक्योरिटी भी होगी, ओहदा भी होगा
0: बिल्कुल
1: और थोड़े बहुत पैसा भी होगा, उसने तय किया कि मेरे पीछे कुछ होना हो मैं आर्टिस्ट ही बनाऊंगा।
0: अच्छा
1: और एक्टर नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक्टर नहीं था, मैं एक सीरियस आर्टिस्ट था। मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था, थिएटर को लेकर मेरे कुछ एम्बिशंस थे।
0: जी
1: मैं मुंबई में जाकर स्टार बनूंगा ऐसा मेरा कोई आदर्श नहीं था। मैं उसको बुरा नहीं कहता, लेकिन मेरा आदर्श नहीं था वो।
0: बस एक
1: मैं
0: कलाकार, एक
1: बस
0: आर्टिस्ट।
1: बिल्कुल वो मेरा एक एक्सटेंशन था। मैं जो कर रहा था उसी का एक एक्सटेंशन है कि मैं एक मीडियम में काम कर रहा हूं, अब मैं दो मीडियम में करूंगा, तीन मीडियम में करूंगा। तो जब टेलीविजन में आया तो वो टेलीविजन का मैं कहूंगा बहुत अच्छा दौर था। आप
0: अच्छा
1: सोचिए कि उस लेट 90s में मैंने उस समय टेलीविजन में अनुराग बासु के साथ काम किया, मैंने श्रीराम राघवन के साथ काम किया, ठीक है, उसी दौर में कश्यप भी

0: टेलीविजन में कर रहा था, इम्तियाज अली भी टेलीविजन में थे, रवि राय भी टेलीविजन में थे, तो एक बहुत बढ़िया दौर था अच्छी राइटिंग का, अच्छे डायरेक्शन का, अच्छे कैरेक्टर्स का टेलीविजन का। तो मैं बड़ा खुश था टेलीविजन से, डेली सोप नहीं बन रहे थे, वीकली सोप बन रहे थे, टेलीफिल्म्स बन रही थी। मैं जो आगे चल के जो फिल्म डायरेक्टर्स बने वही सब टेलीविजन में थे, आगे चल के जो फिल्म में अच्छे सिनेमाटोग्राफर बने वो सब टेलीविजन में थे। तो हम लोग कैरेक्टर बिल्ड करते थे टेलीविजन में। और सोचिए, मैं जब टेलीविजन में काम कर रहा था तो महीने के महीने कमा रहा था, तो एक तरह से आप सिक्योर भी हो गए, है ना। तो बहुत अच्छा था मेरे लिए, तो बहुत बढ़िया दौर था। फिर सिनेमा बना, और सिनेमा जिस तरह के सिनेमा से मैं आया, वो सिनेमा उस दौर के लिए अटपटा था, क्योंकि वो दौर जो था ना, एक तरफ तो एक्शन का दौर था, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, ये लोग एक्शन के मास्टर्स थे,
1: आ रही थी। हाँ, बिल्कुल।
0: दूसरी तरफ रोमांटिक फिल्म का दौर था, आमिर, शाहरुख और सलमान, ये लोग रोमांटिक फिल्म्स ही कर रहे थे।
1: बिल्कुल।
0: तो ये दो स्रोत चल रहा था। सीरियस सिनेमा उस समय ना के बराबर
1: ना के बराबर था। बिल्कुल।
0: सीरियस सिनेमा का दौर मिड 80s में खत्म हो गया था। उसके बाद कोई सीरियस सिनेमा बन ही नहीं रहा था, अगर इक्का दुक्का बन भी रहा था तो वो कोई देखने के लिए कुछ नहीं था। तो इस समय या तो आप खिलाड़ियों के खिलाड़ी करेंगे, या ऐलान करेंगे, या परदेसी परदेसी
1: रोमांटिक
0: उसमें जाएंगे
1: जी,
0: या आप कहीं नहीं। मुझे देखकर या मुझे जिस तरह से लोगों ने इंडस्ट्री की कुछ लोगों ने नापा तोला कि अरे ये यहां या वहां फिट नहीं होता है
1: जी।
0: ये मेरे लिए एक बात कहने लगे कि ये 80s का या 70s का अमोल पालेकर है, समझ रहे, वो जो चिच्चोर और छोटी सी बात और बातों बातों में और वो जो वो रजनीगंधा या सीरियस सिनेमा जो है उस तरह का, एक बॉय नेक्स्ट डोर, एक अच्छा सुशील पढ़ा लिखा लड़का जो ट्रेनिंग लेके आया है, तो उसको हम कहां फिट करेंगे, इस तरह का वो था। और सच बताऊं तो गलती मेरी भी ये थी कि मेरे अंदर वो एम्बिशन नहीं थी, वो ड्राइव नहीं था कि मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं यहां बिलोंग करता हूं, तो मैंने भी नहीं किया
1: इस तरह के रोल में
0: जी जी जी जी, मैंने वो कोशिश ही नहीं की।
1: पर एक आर्टिस्ट के तौर पर ये अच्छी बात भी है कि आप अलग अलग वेरिएशन लेकर आते हैं, अलग अलग किरदार गढ़ते हैं, किसी एक तरफ टाइपकास्ट नहीं हुए हैं।
0: वो बन गया, वो हो गया कि लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना कि थिएटर से टेलीविजन हो गया, मैंने कोशिश नहीं की, वो हो गया। एंकरिंग होस्टिंग में बन गया, वो कर रहा था मैं उस समय, पैसे कमा रहा था, पता नहीं कहां से मैंने अपने आप के अंदर एक एंकर होस्ट पा लिया छोटे समय के लिए। फिर मैं उससे भी निकल गया क्योंकि उसमें ब्रांडिंग हो गई थी मेरे दिमाग में कि ये एंकर होस्टिंग कर रहा है, मैं उससे निकल गया। एक्टिंग में क्या था कि चूंकि मैं टीवी में वैरायटीज रोल कर रहा था और सिनेमा में वैरायटीज नहीं होते थे उन दिनों ना, स्टॉक कैरेक्टर्स होते थे, हीरो का फादर, हीरो की मदर, हीरोइन की फ्रेंड, कॉमेडियन, विलेन मतलब एक ही तरह का विलेन, कॉमेडियन मतलब वो आते ही लोग हंसेंगे, आप समझ रहे हो, वो किरदार जो कैरेक्टराइजेशन कहते हैं वो नहीं था। वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा लगान के बाद, दिल चाहता है के बाद, सत्या के बाद थोड़ा बदलने लगा। उसको आने में फिर भी 3-4 साल थे, जब मैं आया हजार चौरसी की माँ के 1999 में, तब यही चल रहा था दौर। फिर टेलीविजन बदल गया, डेली सोप आ गया, सास बहू हो गया, मैंने टेलीविजन भी छोड़ दिया, मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, ना मैं उसमें फिट होता हूं, ना मैं कर सकता हूं, और ना मेरा जो वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स है, उसके साथ जाता है। तो भाई मैं करूं तो करूं क्या, तो मैंने थिएटर एक्टिविटी और बढ़ा दी, मैं ग्लोबली थिएटर करने लगा
1: जी।
0: मैं जो नाटक कर रहा था वो बाहर ट्रैवल करने लगा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया में जगह जगह मैं ट्रैवल करने लगा। बीबीसी में से रेडियो प्लेस का मेरा दौर शुरू हुआ, और यहाँ कुछ बंगाली फिल्मों से मुझे बुलावा आने लगा। तो यहाँ हिंदी फिल्म में कुछ सीरियस फिल्में चल रही थी, वहां बंगाली फिल्म से जो साहित्य बेस्ड फिल्में थी, लिटरेचर बेस्ड, फिर कुछ फिल्म मेकर्स थे जो ढूंढ रहे थे कि कुछ एक ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी मिले, जो इस तरह के कैरेक्टर्स जो साहित्य में हैं, जो पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, थिंकिंग, वो पोर्ट्रे करे, तो मुझे बुलावा आया, तो मैं गया, क्योंकि बंगाली फिल्म से मैं काम करने का मेरा शौक पुराना था, वही फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ और मुझे अच्छी फिल्में मिलने लगी, तो वो मैं करने लगा। तो अब बंगाली फिल्म, हिंदी फिल्म, बीबीसी रेडियो, खूब सारा थिएटर और एड फिल्म्स मिलने लगे, तो वो करने लगा। तो कमाई मेरी पहले से कम हो गई क्यों, मैं टीवी छोड़ दिया, लेकिन उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैं नुक्कड़ नाटक से आया था। मैं जानता था कि आप किसी भी परिस्थिति में आप जो कर रहे हो और कह रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हो। तो इस परिस्थिति से मैं जूझना मेरे लिए बड़ा आसान था क्योंकि मैं क्रिएटिवली सेटिस्फाइड था, पहली बात तो ये, एज एन आर्टिस्ट मैं सेटिस्फाइड था, और जितना मिल रहा था बहुतों से ज्यादा था,
1: बिल्कुल,
0: तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी।
1: और अभी ओटीटी आ गया है, उसमें तो वैसे भी जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत जगह है, बहुत किरदारों की जगह।

0: है, जो कहीं फिल्मों में लिमिटेड था
1: बिल्कुल
0: वो
1: नहीं,
0: यहाँ पर
1: ओटीटी में
0: अभी।
1: एक अच्छी बात ये हुई कि
0: जी
1: ओटीटी में ना बहुत कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं,
0: जी
1: और एक कैरेक्टर को अगर 3 सीन भी मिलता है ना, वो तीन बहुत कमाल के सीन्स लिखे जाते हैं, वो
0: बिल्कुल।
1: ऐसे ही नहीं होते कि उनको आए और चले गए, वो सीन का कोई मायने होता है। तो भले ही वो 8 एपिसोड का कोई सीरीज है ओटीटी में, उसमें एक एपिसोड में वो आ रहा है, जैसे मैंने किया है आर्या सीजन 1 में,
0: जी
1: मैंने एक एपिसोड में काम किया सुष्मिता के साथ, लेकिन वो किरदार एक डेफिनेट किरदार था जो उस एपिसोड में आता है और उस एपिसोड को इम्पैक्ट करता है और चला जाता है।
0: जी
1: तो उसको बिल्ड करने में मजा आया, उसकी वर्कशॉपिंग हुई, मैंने
0: बिल्कुल
1: सुष्मिता सेन के साथ 2 दिन वर्कशॉपिंग की एक रिश्ता बनाने के लिए, उस पर काम किया, उसकी आवाज पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उस स्वभाव पे, ये सब कुछ ओटीटी में एक क्राफ्ट को लेके जो एक सीरियसनेस आ
0: जी
1: गया था, अभी कितने दिन बरकरार रहेगा मुझे पता नहीं,
0: हाँ
1: लेकिन ये एक सीरियसनेस ये आ गया था ओटीटी में
0: जी
1: जो मुझे अच्छा लगा। ये मेरे थिएटर के प्रशिक्षण के साथ बहुत अच्छा जोड़ता है, जहां
0: जी
1: आपको स्क्रिप्ट पहले मिलता है, जहां आपको बैकग्राउंड पहले दिया जाता है, जहां आपका रिसर्च होता है, जहां
0: जी
1: वर्कशॉपिंग होती है, फिर प्रिपेयर्ड होकर आप सेट पे जाते हैं।
0: बिल्कुल। यहां सुनते हैं आपकी पसंद का एक और गाना।
1: जी मेरे पसंद के गाने, अब हम अमिताभ बच्चन के दौर में आ जाते हैं,
0: हाँ
1: बारिश का मौसम है, तो रिमझिम गिरे सावन जो है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा
0: मंजिल
1: गाना
0: फिल्म
1: है,
0: से।
1: वो आप सुना दीजिए, लोग भुट्टा
0: बिल्कुल
1: खाते हुए सुनते हैं उसको।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: आते हैं डबिंग इंडस्ट्री की तरफ।
1: जी
0: तो कैप्टन अमेरिका की बात ना की जाए तो ये इंटरव्यू पूरा नहीं होगा,
1: जी जी
0: क्योंकि
1: जी
0: वॉइसिंग में आपने ऐसे तो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज की डबिंग की है,
1: जी जी
0: लेकिन साथ साथ ये कुछ किरदार हैं
1: जी
0: जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, पसंद किए गए हैं।

0: जी जी जी
1: तो इससे कैसे जुड़ना हुआ और इसकी चुनौतियां अपने लिहाज से कैसी है?
0: देखिए, मैं दिल्ली में ना, जब मैं थिएटर की पोजीशन ले रहा था तो कमाने के लिए मैं वॉइसिंग करता था।
1: जी
0: मैं बड़े इंटरेस्टिंग वॉइसिंग करता था। मैं मलयालम सीरीज जो होते थे टीवी के लिए, दूरदर्शन, उसको हिंदी में डब करता था। पपेट फिल्म में वॉइसिंग देता था, पपेट्स की वॉइसिंग। हाँ, तोते की वॉइस, सियार का वॉइस, ये सब मैं करता था वहां पे। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह की भी बैकग्राउंड वॉइसिंग करता था, तो
1: जी
0: बड़ा मजा आता था। मुंबई में आया तो थोड़ी एड की वॉइसिंग की, लेकिन पूरी तरह से नहीं, उतना ही हुआ। फिर छूट गया क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हो गया। बाद में 2010 के आसपास फिर से मुझे वॉइसिंग के लिए, पता नहीं, साउंड एंड विजन से बुलावा आया कि आप करना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने करना शुरू किया और हॉलीवुड फिल्मों में मुझे वॉइसिंग का मौका मिलने लगा। कुछ बड़ी बड़ी फिल्में मैंने हॉलीवुड की 2012, 18, बी मूवी करके की। और फिर वॉर्नर ब्रदर्स से फिर टेस्टिंग का वो आया। जब ये सारी कुछ हॉलीवुड की बड़ी फिल्में करने के बाद टेस्टिंग का मौका आया, और पता नहीं कैप्टन अमेरिका के लिए मुझे क्यों चुना गया, आई डोंट नो दैट, क्योंकि उसकी जो आवाज है
1: जी
0: उसका टेक्सचर मेरे से थोड़ा अलग है।
1: अच्छा
0: लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक लीडरशिप का सवाल था कि आवाज में एक लीडरशिप आनी चाहिए
1: जी
0: और संवेदनशीलता भी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। क्योंकि स्टीव रॉजर्स जो है बड़ा संवेदनशील लीडर था,
1: जी
0: वो बड़ा ही रूखा लीडर नहीं था कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसा नहीं था वो, कि वो अपनी बात को बड़े सहज तरीके से रखता था। तो वो लाने की बात थी, तो उन्होंने मुझे चुना। तो फिर मैंने कहा करते हैं। फिर 11 साल तक वो करता रहा मैं, वो एवेंजर्स में भी और कैप्टन अमेरिका की सीरीज में भी वो चलता रहा फिर।
1: बिल्कुल, जो लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
0: जी जी
1: बिल्कुल, तो अभी थिएटर, टेलीविजन, फिल्म्स, वॉइस इंडस्ट्री, डबिंग
0: जी
1: इंडस्ट्री,
0: जी
1: अब और क्या आगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं?
0: वर्टिकल्स
1: अच्छा
0: हो रहे हैं बहुत, ठीक
1: अच्छा
0: है, तो वो भी अभी करने को मौका मिल गया है।
1: जी
0: वो वर्टिकल्स जो है वो आपके एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के शॉर्ट्स होते हैं। वो तो 40 मिनट की कहानी को एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के एपिसोड में बताए जाते हैं,
1: हाँ हाँ
0: ठीक
1: बिल्कुल
0: है। तो अब वो उसका दौर आ गया, अब उसमें भी काम कर रहा हूं
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मैं।
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बारीकियां, आपके अनुभव जो आपने साझा किए
0: जी
1: बहुत अच्छे लगे, और आपके आगे जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, उसके
0: जी
1: लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विदा चाहते
0: थैंक यू।
1: हैं, और आगे फिर से जरूर मिलेंगे और नई चीजों पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध
0: आपका
1: भारती
0: भी
1: के
0: बहुत बहुत
1: स्टूडियो
0: शुक्रिया।
1: में आने का।
0: ये थी अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।

0: आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: सत श्री अकाल, प्रोग्राम किसान वाणी लेके मैं सुनीता हाजिर हाँ। किसान वीरा ते किसान पैना दे प्रोग्राम किसान वाणी दे तहत असी सुनांगे हफ्तावारी सिलसिला खुंड चर्चा भाग 393। विशा होवेगा झोने विच बेलोड़ी यूरिया ते कीटनाशक। भाग लैण वाले कलाकार होणगे मुख्तियार दा किरदार निभाउणगे मनप्रीत सिंह कोटी, करतारो दा किरदार अदा करणगे मनप्रीत कौर, नाजरो दे रूप विच हाजिर होणगे राजपाल कौर परी ते दीपे दा रोल अदा करणगे अमृत, आलेख मनदीप सिंह कोटली ते प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। आओ हुण सुणदे हां खुंड चर्चा झोने विच बेलोड़ी यूरिया ते कीटनाशक।

0: ताई जी घटो घट 180 तो 200 लीटर पानी प्रति एकड़ लगना चाहिदा है। घट पानी वरतन नाल दवाई दा असर नहीं हुंदा ते पत्ते सड़ जांदे ने।
1: वाहगुरू दीपिया, मैं ता शेरा अज तक बस तीन टोलियां नाल ही किला निबेड़दा आया सी।
2: ताही ता रोना रोने हुन्ने हो के दवाइयां नकली आ गईयां। नकली दवाइयां नी, तुहाडा तरीका नकली सी।
3: ओए तो ओ गल होगी, नाच ना जाने अखियांगन टेढ़ा। ओए अपनी गलती मन्नण दी बजाए दोष कंपनियां दे सर मड़ी जाने आ।
0: कंपनियां भी कई बार गलती करदियां ने ताया जी, पर जे किसान जागरूक होवे, पक्का बिल लवे ते बैच नंबर चेक करे ता ठगी तो बचा जा सकदा है।
1: ले दीपे सुन ले गल, आ जिहड़ा डब्बा मैं लिया एदा ता बिल भी नहीं दिता दुकानदार ने।
0: देख लो चाचा जी, बिना बिल तो ता दवाई लियाउणा मतलब अपनी लुट आप करवाउणा है। कल नू जे फसल खराब हो गई ता जिम्मेवार कौन होवेगा?
2: चोर नालों पंड काली, बिल मंगण वेले इन्हां नू शर्म आउंदी है।
1: ओ शर्म कादी करतारो, दुकानदार कहिंदा बिल नाल GST लगू ते फिर पैसे वध लगणगे।
3: ओए मुख्तारिया, ओए 100 रुपए दा टैक्स बचाउण खातर तू 10,000 दी फसल दा ते लाती, ए तो ओ गल होगी। अखे चवाती बचाउंदे बचाउंदे ने घर फूक लिया।
4: सच्ची भाई, बहुत वड्डा रिस्क लैंदे ने साडे किसान वीर।
0: चाचा जी, अज ही जाके बेलोड़ियां दवाइयां वापस करके आओ।
1: पर दीपिया, जे मैं स्प्रे ना कीती ता मेरा गुआंढी मेरे ते हसूगा के मुख्तियारा खेत बेला छड्डी बैठा है।
2: हाय ओए रब्बा, लोक लाज कुल दी मर्यादा, चोली चुक चुक छज च पावी। तेनू गुआंढी दी चिंता है के अपनी जेब दी?
3: ओए मुख्तियारिया, ओ खेती दिखावे दी नी, अंकड़िया ते विज्ञान नाल हुंदी आ। आ जेड़ा खर्चा बच गया ओही तेरा मुनाफा।
0: बिलकुल ताया जी, अज दे दौर विच खेती बाड़ी च सब तो वड्डी कमाई खर्चा घटाउणा ही ता है।
1: ता फिर हुण मैं की करां दीपिया, इन्हां डब्बां दा की बणू पुत्त हुण?
0: आ टॉनिक ते बेलोड़ा कीटनाशक वापस करो, सिर्फ ओही दवाई रखो जिस दी सिफारिश पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करदी है, ते ओ वी उदो छिड़को जदो बीमारी आवे।
4: ते खेत चो पानी दा की करना दीपिया?
0: पहलां खेत सुकाओ, दो दिन हवा लगन दिओ, फिर पतला पानी लाओ। लगातार पानी खड़ा रखन दी कोई लोड़ नहीं।
1: ते यूरिए दा कट्टा फिर ओदा दस की करिए?
2: जे यूरिए दा ना लिया ना ता मैथों बुरा कोई नहीं। आ हुणे ते दीपे ने कहा है भी अगस्त दे विच यूरिया जहर है।
1: ओ मैं ता पुछदे ही सी भगवान ने, गुस्सा तू एवें कर जानी है की जे गुड़ दित्ते आ मरे ता जहर क्यों देना।
3: शाबाश मुख्तारिया, तू भी हुण आया लैण ते।
0: चाचा जी, PAU दी किसान मोबाइल ऐप आउंदी है, नाले हर हफ्ते डिजिटल अखबार खेती संदेश आउंदा है, उनू पढ़िया करो।
1: मेरे मोबाइल च तां दीपिया मेरा मुंडा गाने ही भरी रखदा है। ओ मैं दस केड़े वेले करां ऐपां नाल सौदे।
2: गाने सुनने दी उम्र लांगी थोड़ी, हुण खेती दीआं खबरां सुनिया करो।
4: दीपिया पुत, आ साडे फोन च वी आ ऐप जी पा दे, असीं आप ध्यान रखांगे।
0: जरूर ताई जी, मैं हुणे डाउनलोड करके दिंदा।
3: ओ वेख मुख्तारिया, ओए साडा मालवा पहला ही बहुत संताप भोगी बैठा है। ओ धरती हेठला पानी भी खराब हो गया, ओए हवा च भी जहर मिल रहा है। जे असी हुण भी ना संभले ता फिर कदों संभलांगे।
1: गल ता तेरी सच्ची है पूरिया। आ मेरे नाल लगदे पिंड दे विच ना हर दूजे घर च कैंसर दा मरीज है, डाक्टर कहिंदा स्प्रेयां दा असर है।
0: हां जी चाचा जी, जदों असी बिना मास्क पाए तेज धुप च उल्ट हवा वल स्प्रे करदे हां ता ओ जहर साडे साह राही अंदर जांदा है।
2: सुन लिया, अपनी जान दी ता परवाह कर लिया करो, जान है ता जहान है।
1: ले भी दीपिया, वादा हो गया तेरे नाल, अगे तो जदों भी स्प्रे करूंगा ना पूरी किट पा के करूंगा शेरा।
0: बहुत वधिया फैसला है चाचा जी, अते स्प्रे हमेशा सवेरे जा शाम वेले ठंडे मौसम च करनी चाहिदी है, दोपहर दी धुप च नहीं।
3: ते एक गल होर, ओए हवा दा रुख देख के हवा दे उल्ट थुक्या ता आपदे मुंह ते ही पैंदा।
4: चलो भाई, अज दी इस चर्चा ने ता मुख्तियार भाई दियां अखां खोल दित्तियां।
2: अखां ता खोल दित्तियां, पर हुण अमल भी करना पऊ।
1: ओ अमल क्यों नहीं करांगे करतारो, अज तो मुख्तियारा नवा किसान बनू, स्मार्ट किसान।
0: स्मार्ट किसान ओही है जो विज्ञान दी सुने, अफवाहां दी नहीं
3: ते दुकानदारां दे कहन ते नहीं, यूनिवर्सिटी दी सिफारिश ते चले।
1: लै दीपिया, आ फट चाबी ट्रैक्टर दी पुत, चल मेरे नाल शहर, आ सारियां बेलोड़ियां जहरां दुकानदार दे मत्थे मार के आईए।
2: वाह जी वाह, देर आए दुरुस्त आए, अज पहली बार मेरे घर आले ने अकलमंदी वाला काम कीता।
4: नी लै भैणे, इस खुशी च ना हुण तू सानू ठंडी लस्सी पिया दे अज सारिआं नू।
2: हुणे लियाई भैणे।

0: मैं तो कहनी हूँ आज शाम नू गुड़ वाली खीर भी बनाऊंगी मैं।
1: खीर खवाई बाद च करता रो, पहला दीपे नू ना चंगी तरह मक्खन पेड़ा खवा, जिने मेरे 1000 रुपए बचाए ने।
2: चाचा जी मेरी फीस तो एहो है कि तुसी अपने पिंड दे बाकी किसानां नू भी ये गल समझाओ।
3: हाँ बिलकुल दीपे पुत, अज शाम नू गुरुद्वारे दे लाउड स्पीकर च जां फिर सथ च बह के सारे पिंड नू समझाऊं। मैं तां
1: पक्का भाई पूरिया, मैं खुद सथ च खड़ के कहूंगा, ना काकटेल स्प्रे करो, ना अन्नेवा पानी लाओ, ते ना बेलोड़ी यूरिया सुट्टो।
0: आ होई ना मर्दां वाली गल, जिथे सच ओथे रब।
4: साडा मालवा ताही हसदा वसदा रहू जे किसान वीर समझदार होणगे।
2: धरती मां दी सेहत सुधरेगी ताही साडी सेहत सुधरेगी। किसान वीरो, अगस्त सितंबर दे महीने विच झोने विच बेलोड़ियां स्प्रेहां ते कॉकटेल दा खेड़ा छड्डो।
3: खेत दा नियमित सर्वेखण करो, मित्र कीड़े दी राखी करो, ते सिर्फ लोड़ पैण ते ही सिफारिश कीती दवाई छिड़को।
5: खेतां च लगातार पानी खड़ा ना रखो, हवा लवाओ ते यूरिया दा अन्नेवा छिड़का बंद करो।
1: हां भाई, बिल लैके ही दवाई खरीदो, नकली ते अन अधिकारत टोनकां तो बचो, खर्चा घटाओ, पंजाब बचाओ, किसानी बचाओ।
3: ते हुण सारे घरां नूं जाओ।

जी, सब तो पहला 100 मिलीलीटर जदों एक करके, उस तो बाद गल करांगे आपां, इस घोल विच 1 एकड़ दे नरमे दे बीज पाओ ते 2 घंटियां वास्ते रख दो। इस तो बाद उपरोक्त सोधे हुए बीजा नू 30 मिंट लई छावें सुकाओ अते फिर बिजाई करो। तरल जीवाणु खाद की वरतों समय की सावधानियां वरतनिया चाहिए हैं, हुण गल करते हाँ आपां इन्हां बारे। जी, सब तो पहला तरल जीवाणु खाद जीवत उत्पाद हैं, इसलिए भंडारण दौरान विशेष ध्यान की लोड़ है, इसलिए इसनों छावें रखो। म्याद पूरी होने तो बाद पहला वरतो। तरल जीवाणु खाद विच होर रसायनिक पदार्थ ना मिलाओ, केवल दित्तियां गईयां सिफारशां अनुसार ही जीवाणु खाद की वरतों करो। तरल जीवाणु खाद नूं गर्म पानी विच ना पाओ।

प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। साडे जिन्हां श्रोतियां ने आए मेहमान नाल कोई गल सांझी करनी होवे तां ओह साडे स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते संपर्क कर सकदे ने। सो सुनना ना भुलना, मिति 27 अगस्त दिन वीरवार नूं दोपहर 12:10 ते प्रोग्राम मुश्किल दसो हल दसांगे।

0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तो अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।

0: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: बधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800।

0: तमाम श्रोतियां दी खिदमत दे विच मैं मनदीप कौर हाजिर हाँ प्रोग्राम युववाणी दे नाल। ते प्रोग्राम युववाणी दे तहत अज तुसी सुनोगे विशा किशोर अवस्था विच मुंडियां च होण वाले बदला, जिस बाबत जानकारी देणगे डॉक्टर सतीश जिंदल। ते इस इन्हां डॉक्टर साहिबान दे नाल मुलाकात कर रहे ने मनदीप रजौरा। प्रोग्राम सुनने तो पहला आओ सुनदे हां कुछ संदेश।
1: टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीप वेल फर्नीचर कुशनिंग।
2: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नो हकीकत बनाने लिए चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
3: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन, ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नु बनाओ होर भी आसान।
2: तो आज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
4: टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
1: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।
5: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका। जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन, आज ही खरीदो।
1: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताए।

0: या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीप वेल फर्नीचर कुशनिंग।
1: दोस्तों स्वागत है प्रोग्राम युववाणी दे विच तुहाडा। आज प्रोग्राम युवा मंच दे तहत किशोर अवस्था दे विच लड़कियां दे विच यानी कि मुंडियां दे विच होण वाले बदलावां संबंधी जानकारी देण दे लई साडे नाल ने सीनियर मेडिकल अफसर डॉक्टर सतीश जिंदल। आओ इन्हां दे नाल गल करदे हां किस तरह

0: ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੁਵਾਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮਨਦੀਪ ਰਜੌਰਾ।
3: ਹਰ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ।
4: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਾਪੁਰਮ IGL ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਓ ਅਪ ਟੂ 85% LTV ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ।
3: ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨਾਪੁਰਮ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਮੰਨਾਪੁਰਮ IGL ਗੋਲਡ ਲੋਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੋਥ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।
5: ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1-800-420-2233।
6: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।
3: हर बड़ा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू होता है, पर उस सोच नो हकीकत बनाने लिए चाहिदा होता है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
4: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नु बनाओ होर भी आसान।
3: तो अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच। मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
5: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
7: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटर।
3: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नो हकीकत बनाने लिए चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
4: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नु बनाओ होर भी आसान।
3: तो अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच। मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
5: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
7: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स। 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदो।
6: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।
2: ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੁਵਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

तमाम श्रोतियां दी खिदमत दे विच मैं मनदीप कौर हाजिर हाँ प्रोग्राम शाम सुहानी दे नाल। प्रोग्राम सुन रहे सारे ही श्रोतियां नूं अज दे प्रोग्राम दे विच असीं स्वागत करदे हाँ। उम्मीद करदे हाँ आप सब ठीक ठाक होवोंगे, तंदरुस्त होवोंगे। अज दे प्रोग्राम नूं शुरुआत करन दे लई शुरू करदे हाँ इस गीत दे नाल।

तमाम श्रोतियां की खिदमत दे विच मैं मनदीप कौर हाजिर हाँ। प्रोग्राम शाम सुहानी दे नाल प्रोग्राम का शुरुआत कर दें इस गीत दे नाल।

0: ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ।
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
0: ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ।
1: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
2: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।
3: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नो हकीकत बनाने ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
4: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नु बनाओ होर भी आसान।
3: तो अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
5: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
2: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।
3: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नो हकीकत बनाने ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
4: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नु बनाओ होर भी आसान।
3: तो अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
5: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

0: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।
1: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता सब।
0: कैसे पता चलता है?
1: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਗ।

0: जी प्रोग्राम सुन रहे हो तुसी। शाम सुहानी साडे श्रोता सर नाल जुड़ चुके ने। हैलो हैलो,
1: हेलो। हाँ जी मैम,
0: सत श्री अकाल। ए मिठी जी आवाज किस दी है ते कौन गल कर रहे ने, कित्थों गल कर रहे ने?
1: मैं अमनदीप बोल रही हूँ, पिंड ते आने तो जी।
0: पिंड ते आना तो अमनदीप। ते
1: हाँ जी,
0: अमनदीप की करदे हो तुसी?
1: कुछ नहीं मैम, करे होने। हाँ
0: अच्छा, किन्नी कु
1: जी
0: उम्र होगी तुहाडी?
1: मैम, 22 साल दी हैं जी।
0: मैनूं आवाज़ नहीं लगता सी, छोटी जी उम्र होनी है तुहाडी।
1: हाँ जी
0: ते कुछ तो करदे होंगे, कुछ नहीं कहना तो मैनूं वाजिब नहीं लगता सवाल। कुछ तो करदे होंगे
1: मैम,
0: घरे?
1: कपड़े सिलाई करते हैं मैम।
0: बिल्कुल, फिर तुसी आए कहो ना भी मैं कपड़े सिलाई करदी हूँ। कुछ नहीं करना मैनूं नहीं लगता अज दे जमाने दे विच कोई बंदा वेला होगा,
1: नहीं
0: है ना
1: मैम, हाँ जी ये तो हैगा जी।
0: जी? ते अज दा विषय तुहानूं पता है की है,
1: हाँ जी मैम,
0: की कहोगे इस विषय?

0: थे।
1: मैम जी, कोई किसी तो गलती हो जाए, माफ कर देना चाहिए जी। हाँ जी, कई
0: थोड़ी तो हुई है कभी गलती,
1: बार हो भी जाती है जी।
0: ते माफ तुसी कीता किसे नू कदे?
1: हाँ जी, कर भी दिने हैं जी, पर
0: चलो माफ।
1: अगला कई बार मनदा नहीं हुंदा, फिर भी अपन माफी मंगी ही जाने बार बार।
0: हाँ, ए वी है ना एक विषय है गल करन दा। अच्छा,
1: हाँ
0: तुसी मेनू ए दसो कि जदों तुसी माफ कर देने हो फिर किवें दा महसूस हुंदा है? दिल नू
1: वधिया लगदा जी।
0: दिल हल्का हो जांदा ना?
1: हाँ जी,
0: जेडे अज दे लोग है ना, ओहो इसे करके तनाग्रस्त ने, असी इन्ने हाइपर हो जाने हैगे कि सानू पता नहीं चलता, असी रिश्तियां नात्यां दी जिहड़ी मर्यादा उहनू भुल जाने है ना।
1: हाँ जी, हाँ जी मैम, सही गल
0: बहुत
1: है।
0: सारे जिवें बच्चे लगा लो, नौजवान लगा लो, अजकल तो जेहड़े बुजुर्ग उम्र दे विच वी ने ओह वी हाइपर हो जांदे ने, है ना, ओह इन्हां चीजां नू भुल जांदे। पर किते ना किते मैनू लगदा कि सानू रिश्तियां दी मर्यादा जे असी कायम करनी है, जे असी अपने बच्चों नू वी सिखाउणा जां किसे नू वी, कोई जरूरी नहीं हुंदा, हर एक उम्र ही सिखण दी हुंदी है, तां
1: हाँ
0: सानू गलतियां नू माफ कर देना चाहीदा है, भुल जाना चाहीदा है ना उहनां नू।
1: जी मैम, सही गल।
0: बहुत चंगा लग्गा तुहाडे नाल गल करके, ते अग्गे तो जे कोई पुछे ना तुहानू तां तुसीं इह नहीं कहिणा वी मैं कुछ नहीं करदी।
1: हाँ जी मैम, नहीं पता की है, हुण फ्री सीगे इस करके भी कुछ नहीं करदे, ऐदां कहंदे सीगे।
0: ठीक है, फिर
1: हाँ
0: हुण
1: जी
0: कुछ
1: मैम,
0: नहीं कर रहे सीगे? तुसी
1: हाँ जी, नहीं हुण तो
0: रेडियो
1: रोटी।
0: सुन रहे हो, तुसी मेरे नाल गल कर रहे हो? बहुत
1: हाँ जी
0: चंगा लग्गा तुहाडे नाल गल करके। ते गीत केड़ा सुनोगे फिर अज?
1: मैम, जस्सी गल का कोई भी सुना दो। हाँ
0: चलो, जस्सी गिल दा तुहानू मैं गीत सुना रही है, नखरे। ते प्रोग्राम च कॉल करने लई बहुत बहुत शुक्रिया
1: ओके, थैंक यू मैम।
0: जी।

प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। साडे जिन्हां श्रोतिया ने आए मेहमान नाल कोई गल सांझी करनी होवे तां ओह साडे स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते संपर्क कर सकदे ने। सो सुनना ना भुलना, मिति 27 अगस्त दिन वीरवार नूं दुपहर 12:10 ते प्रोग्राम मुश्किल

0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है कि स्थिति ते नेड़े नजर रखने लिए कुछ पत्री टीम दा गठन किया गया है।
1: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: आज पटना विच बिहार के मुख सकत्तर प्रत्यय अमृत की प्रधानगी हेठ एक उच पदरी समीख्या मीटिंग की गई। संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेटा ते सीनियर पुलिस अधिकारियों ने 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए ने। गृह मंत्री अमित शाह ने नेपाल विच भारी मीह ते ग्लेशियर पटन कारण बिहार विच पैदा हुए हड़ां दे खतरे के मद्देनजर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नाल टेलीफोन ते गलबात की। गृहमंत्री ने स्थिति नाल जिठण लई राज सरकार नूं हर संभव सहायता देण दा भरोसा दित्ता। श्री शाह ने कहा कि स्थिति नाल जिठण लई एनडीआरएफ नूं तैनात किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नेपाल विच हड़ां कारण होए जानी नुकसान ते तबाही ते दुख प्रगट किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री राधाकृष्णन ने मृतकां दे परिवारां नाल हमदर्दी प्रगटाई अते जख्मियां दे छेती ठीक होण दी कामना कीती। उन्हां ने लापता लोकां नूं सुरक्षित अते छेती बचाए जाण लई भी प्रार्थना कीती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस मुश्किल समय विच भारत नेपाल दे लोकां दे नाल खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह नाल टेलीफोन ते गलबात कीती अते नेपाल विच हड़ां कारण होए जानी नुकसान ते दुख प्रगट कीता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने कहा कि भारत के लोग इस मुश्किल समय विच नेपाल नाल मजबूती नाल खड़े ने। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल नूं हर संभव सहायता प्रदान करने लई तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोवां देशां दीआं टीमां बचाव ते राहत कारजां विच रल के काम कर रहीआं ने। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे सारे उच्च आवाजाई वाले रेलवे रूटां नूं चार मार्गीकरण वल वध रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री वैष्णव ने कहा कि करीब 11,000 किलोमीटर विच फैले 7 उच्च आवाजाई वाले रूट ने ते देश दे रेल आवाजाई दा एक वड्डा हिस्सा रखते ने। 7 उच्च आवाजाई वाले रूट दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा ते दिल्ली गुवाहाटी ने। श्री वैष्णव ने कहा कि यह रूट रेलवे ट्रैफिक का करीब 41% ने जदों की रेलवे नैटवर्क का 16% कवर करते ने। मंत्री ने कहा कि इन्हां रूटां दा पसार अहम है क्योंकि यह पूरे नैटवर्क विच वधेरे समर्था पैदा करन अते यात्री अते माल आवाजाई दे भविख दे वाधे नूं हमायत देण विच सहायता करेगा। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत दुनिया की सब तो तेजी नाल वध रही मुख आर्थिकता है अते विशाल मौकियां, निरंतर विकास, नौजवान आबादी, वधदी खपत अते तेजी नाल विकसित हो रहे पूंजी बाजारां दा इसदा विलखण सुमेल मजबूत निवेश दे मौके प्रदान करता है। अज कैनेडा दे टोरंटो विच भारतीय व्यापारक भाईचारे दे प्रमुख मैंबरां नूं संबोधन करदिआं श्रीमती सीतारमन ने इह गल कही।
2: इंडिया टुडे स्टैंड्स एज द फास्टेस्ट।
3: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
2: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
0: खजाना मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने माली अते व्यापारक सेवावां तक पहुंच का पसार किया है। भारत कैनेडा आर्थिक भाईवाली के वधदे महत्व का हवाला देंदे हुए उन्होंने कहा कि कैनेडा विच भारतीय प्रवासी दोवां देशां विचकार एक रणनीतिक पुल है। राष्ट्रीय घट गिणती कमिशन NCM के चेयरमैन हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि कमिशन कोल करीब 7,000 शिकायतां विचार गोचरे ने अते घट गिणतियां दे अधिकारां दी रक्षा ते न्याय, समानता ते समावेशी विकास नूं उत्साहित करन लई उन्हां नूं जल्द तों जल्द हल करन दीआं कोशिशां जारी ने। श्री ग्रेवाल जो अज पंजाब विच घट गिणती भाईचारे नाल संबंधित सुझाव इकट्ठे करन अते मुद्दिआं नूं समझण लई चंडीगढ़ विच सन ने कहा कि कमिशन दे आदेश दे अंदर असल शिकायतां ते सुझावां दी जांच कीती जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सिख कैदियां ते उन्हां दी पैरोल बारे चेयरमैन ने कहा कि अजिहे मामले कानून अते व्यवस्था दे अधिकार खेतर विच आउंदे ने अते लागू कानूनी ढांचे दे मुताबिक नजिठे जांदे ने। उन्हां धार्मिक स्थानां दी यात्रा करन वाले सिख श्रद्धालुआं दी सुरक्षा, माण अते सुचारू यात्रा नूं यकीनी बनाउण दी महत्ता ते भी जोर दित्ता। जम्मू कश्मीर दे पुंछ विच अज छड़ी मुबारक यात्रा धार्मिक अते अध्यात्मक उत्साह नाल कढ़ी गई। इस नाल श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा 2026 दी समाप्ति दी रस्मी शुरुआत हुई। आकाशवाणी दे जम्मू वाले पत्रकार ने दस्सिया कि छड़ी मुबारक यात्रा पुंछ दे दशनामी अखाड़ा मंदिर तों स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज की अगुवाई हेठ शुरू हुई। इस मौके वैदिक मंत्रा नाल पूजा ते हवन किया गया। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, जिला डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा, सीनियर प्रशासन ते पुलिस अधिकारी ते पतवंत

0: इस मौके हाजिर सन। क्रिकेट विच श्रीलंका ने कोलंबो विच भारत खिलाफ दूजे ते आखरी टेस्ट मैच ते चौथे दिन दी खेड खत्म होने तक अपने दूजी पारी विच 6 विकटां ते नुकसान ते 229 दौड़ां बना लईआं ने। आखिर च खास खबरां, नेपाल तिब्बत सरहद नेड़े फोटे कोशी दरिया विच अचानक आए हड़ां कारण 17 लोकां दी मौत, 105 भारतीयां समेत 384 सैलानी लापता। गृह मंत्री अमित शाह ने नेपाल विच भारी मीह ते ग्लेशियर फटन कारण बिहार विच पैदा होए हड़ दे खतरे दे मद्देनजर बिहार दे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नाल गल्लबात कीती। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे सारे उच्च आवाजाई वाले रेलवे रूटां नूं चार मार्गी करन वल वध रहा है। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने माली ते व्यापारिक सेवावां तक पहुंच का प्रसार किया है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन सवेरे 8:30 होएगा। नमस्कार।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਤੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 7:40 ਤੇ 16 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸੁਹਾਨੀ ਦਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ।

प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। साडे जिन्हां श्रोतियां ने आए मेहमान नाल कोई गल सांझी करनी होवे तां ओह साडे स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते संपर्क कर सकदे ने। सो सुनना ना भुलना, मिति 27 अगस्त दिन वीरवार नूं दोपहर 12:10 ते प्रोग्राम मुश्किल दसो हल दसांगे।

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
1: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जानिए में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
1: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने न जा सकें, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह स्तर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
2: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं। और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
1: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमक

0: चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
1: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
0: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गांव है
1: जी।
0: लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ ना शोर है, ना ऊंची ऊंची इमारतें और ना शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
1: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गांव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
0: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
1: अजी जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गांवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है। यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
0: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ, विशेषकर हनले गांव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है
1: जी।
0: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
1: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
0: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब हनले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
1: जी अजी जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हनले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हनले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: जी आपने बिल्कुल सही बताया, पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
1: श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया, हनले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
1: जी,
0: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
1: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊँचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं वे कहते हैं हनले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों अजीत जी, अब समापन किया जाए?
0: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं
1: जी।
0: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे
1: जी।
0: हनले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है, बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
1: श्रोताओ, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हनले को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
0: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800044055 पर या हमारे

0: ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
1: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत डॉक्टर सुचिता। हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
4: वाह, क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
5: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
6: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
7: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
4: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
4: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
6: जी मैम,
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में

0: अवली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
2: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
3: जी मैम।
4: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
2: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
0: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह,
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
3: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
3: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
3: धन्यवाद सर।
4: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए

0: भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
1: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी। शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
3: माँ माँ, पानी दो ना, बहुत प्यास लगी है।
4: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
5: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
4: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
5: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
1: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु

0: सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सुझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
1: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
2: जी हाँ।
1: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
3: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
4: हाँ, उपाय बताइए।
1: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
5: ग्राम सभा?
3: ठीक है।
5: हाँ, ठीक है।
1: समझे? और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
4: हाँ, हम तैयार हैं। ठीक है।
1: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
6: जी, हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
7: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
1: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे, और रामू, तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
8: वो कैसे?
4: क्या गड्ढा बनाना है?
9: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है,
3: फिर इसकी क्या जरूरत है?
8: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
1: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
3: नया तरीका? कौन सा तरीका? बताओ।
8: हमें भी बताओ।
1: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा।
3: सिंचाई टैंक?
1: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े, इससे पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
4: अच्छा, सुझाव तो बड़ा अच्छा है।
0: तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के लिए काम करना शुरू किया, और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी। कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैन लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, कैसे लगे आपको हमारे आज के कार्यक्रम और हमारी आज की जानकारी, जरूर लिखिएगा। तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

तमाम श्रोतियां की खिदमत दे विच मैं मनदीप कौर हाजिर हाँ। प्रोग्राम पांच बाणियां दे गीत लैके जिवें कि साडे श्रोते जानते हैं कि यह सिलसिला साडा अज दे दिन हुंदा है लाइव फोन इन प्रोग्राम। तुसीं साडे स्टूडियो दा नंबर मिलाउणा 0154-242-4331 ते करनी है साडे नाल गल्लबात। सुन सकदे हो पंजाबी फरमाइशी गीत। प्रोग्राम दा आगाज करदे हां इस गीत दे नाल।

0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
3: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।
0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
3: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।
4: ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਾਨ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ। ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ
5: ਹਾਂਜੀ
4: ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
5: ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ੀਰਾ ਮੱਤੂ, ਗੀਤਕਾਰ ਸ਼ੀਰਾ ਮੱਤੂ, ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਖੁਰਦ, ਨੇੜੇ ਨਹਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ।
4: ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣੋਗੇ?
5: ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੀ ਦਰਦਾਸ ਅਖਤਰ ਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ।
4: ਜੀ, ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖਤਰ ਦਾ ਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਜੀ।
5: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।

0: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।
1: प्रोग्राम पांच पानिया दे गीत दे तहत साडे श्रोता जुड़ चुके ने। हैलो हैलो जी, आवाज आ रही है भाई जी तुहानू?
2: हां जी
1: जी, सत श्री अकाल भाई जी, कौन गल कर रहे हो ते कित्थों गल कर रहे हो?
2: सत श्री अकाल जी।
1: जी सत श्री अकाल,
2: दर्शन सिंह जी।
1: दर्शन सिंह कित्थों गल कर रहे हो भाई जी?
2: फुल्लो मिट्टी तो जी, कुल्लो मार्क दा कोई मर्जी ला दो जी।
1: जी गीत तुहाडा आ रिहा जी, कॉल करने लई बहुत-बहुत शुक्रिया भाई जी।
2: धन्यवाद जी।

0: ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 8:44 ਤੇ 56 ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ 8:45 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ।
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
2: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9779091075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
4: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं

0: वाल्मीकि ने जाऊंगा।
1: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
2: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है, उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया।
1: इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
3: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति कल रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इंपैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है।

0: मैंने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
1: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
2: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विल्वन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एन यो एनजी को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोर्दोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेइचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का

ये है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में सफर फिल्म का गाना। गीत इंदिवर ने लिखा है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार, हमारा आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मधुर भंडारकर के बारे में बहुत सी बातें हम उन्हीं से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बातें कर लें। जाहिर है ये बातें भी मधुर भंडारकर के बारे में ही होंगी। मुंबई में ही पले बढ़े मधुर अपने करियर की शुरुआती दिनों में एक वीडियो लाइब्रेरी चलाया करते थे। जी हाँ, वहाँ भी वो फिल्मों से ही घिरे रहते थे। तो क्या मधुर, आपको फिल्मों का शौक बचपन से ही था?
1: बचपन से ऐसा था कि पिक्चर का बहुत शौक था, थिएटर में जाके पिक्चर देखना। और खास करके मुझे याद आता है कि हमारे वो टाइम पे रोड पे पिक्चर बहुत दिखाया करते थे, जैसे गणेश उत्सव होता था या गोविंदा या सत्यनारायण की पूजा होती थी, तो काफी पिक्चर देखी, हर टाइप की पिक्चर देखी, ब्लैक एंड व्हाइट देखी और अलग अलग प्रकार की पिक्चरें देखी। तो सिनेमा का एक जुड़ाव जब से रहा है हमेशा, बचपन में एक नॉर्मल था लेकिन फिल्म से काफी जुड़ाव था कि पिक्चर में जाके शूटिंग देखना, लोगों को मिलना। रोड पे जब पिक्चर देखते थे हम लोग, मुझे याद है कि जब पिक्चर देख रहे और बीच में कोई गाय आ जाती थी तो काफी भागम भाग होती थी।

0: एक वीडियो कैसेट लाइब्रेरी चलाता था। काफी साल मुझे उसमें, 4-5 साल मैंने स्ट्रगल किया। वीडियो कैसेट घर घर जाके पहुंचाता था। मैं खार में रहता था तो वर्सोवा जुहू एरिया इलाके में जाके वीडियो कैसेट देता था। कई फिल्म वालों को भी कैसेट दिया करता था मैं। तो वहां से तो पहले से फिल्म का तो था शौक, लेकिन एक ऐसा हो गया कि जब वीडियो कैसेट देते देते फिल्म वालों से बहुत ही काफी करीब आ चुका था मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यहीं से मौका मिलना चाहिए मुझे। तो मैंने वीडियो कैसेट्स के बाद मैंने कुछ और जॉब्स किए बॉम्बे में, जैसे छोटे मोटे क्लैप देना, कंटिन्यूटी लिखना छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ। मेरी कोई एकदम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई बड़ा डायरेक्टर अपना असिस्टेंट रख लेगा। तो काफी एक सवा साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद मेरी मुलाकात मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी से हुई है। तो उनके साथ मैं जुड़ा रहा 91 से लेकर 95 तक। तो 5 साल का सफर उनके साथ जुड़ा रहा, तो काफी कुछ सीखने मिला। वो एक अलग टाइप के डायरेक्टर है और काफी इनोवेटिव और क्रिएटिव किस्म के डायरेक्टर है। तो बहुत उनसे सीखने मिला और वहां से एक जर्नी मेरी शुरू हुई है। क्योंकि जब पहली पिक्चर जो मैं बनाने निकला था, तो लोगों ने मुझे कहा कि आप कमर्शियल फिल्म बनाइए, क्योंकि जो कमर्शियल फिल्म चलती है। तो मैं जिस तरह की सब्जेक्ट्स और जिस तरह के आइडिया थे मेरे पास, तो कहीं लोगों ने बोला कि तुम बहुत ही इंटेलेक्चुअल सोचते हो और तुम बहुत ही श्याम बेनेगल गोविंद निहलानी टाइप सोचते हो, तुम आप
1: जी
0: कमर्शियल फिल्म में बनाओ। तो मुझे लगा कि रंगीला पिक्चर में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था मिस्टर राम गोपाल
1: जी
0: वर्मा
1: जी
0: जी का। तो उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मुझे लगा कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी चाहिए। तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या अलग टाइप का सिनेमा मत बनाओ, क्योंकि जो पहली पिक्चर होनी चाहिए वो कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए। अगर कमर्शियल फिल्म चलेगी तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा दूसरे प्रकार की फिल्म बनाने का। तो मैंने शायद दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा लिया और सोचा, और इस सबसे मैंने एक कमर्शियल फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की जो दूसरों को पसंद था वो बनाया, जिसका नाम था त्रि शक्ति जो पिक्चर थी, जिसमें अरशद वारसी, मिलिंद गुना जी, शरद कपूर थे। तो वो पिक्चर बनने में ही 2.5 साल लग गए, और बाय द टाइम रिलीज हुई उसको 3 साल के बाद पिक्चर रिलीज हुई। तो जब बॉक्स ऑफिस से पिक्चर लगी तो किसी के स्टेटस वहां पे नहीं थे, क्योंकि अरशद, शरद, मिलिंद गुना, ये तीनों के बॉक्स ऑफिस स्टेटस भी खत्म हो चुके थे। तो बड़े ही जद्दोजहद से वो पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन वो ऐसी पिक्चर थी जिसकी खबर भी नहीं छपी। वो आई और चले गई, पता नहीं
1: पता
0: चला
1: नहीं
0: किसी
1: चला।
0: को। तो मेरे माथे पे एक होता है वो लग गया कि फ्लॉप डायरेक्टर बोल के। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एक इंसान को फ्लॉप डायरेक्टर का जब टैग लगता है, खास करके आपकी पहली पिक्चर नहीं चले, और
1: जी
0: खास करके जो पिक्चर जिसमें कुछ स्टारकास्ट भी नहीं थे, जो बी ग्रेड फिल्म कहा जाता था। तो वहां से उठकर इस पोजिशन में पहुंचना बहुत संघर्ष करना पड़ा।

0: लेकिन आपकी अगली फिल्म चांदनी बार, जिसने न सिर्फ अपने झंडे गाड़े बल्कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिला दिया, उसका आइडिया आपको कैसे आया?
1: देखिए, त्रिशक्ति जब नहीं चलने के बाद एक 1.5 साल ऐसा मेरी लाइफ में आया कि जहां पे मुझे लगा कि मैं क्या काम करूं, बोल के किस तरह की, मुझे एक ही लगा कि ये जो पिक्चर मैंने बनाई थी त्रिशक्ति, ये मेरी फिल्म नहीं थी, ये मेरे दिल से निकली हुई फिल्म नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने किसी और के हिसाब से फिल्म बनाई है, तो मुझे लगा कि एक फिल्म ऐसी बनानी चाहिए जिसमें मेरा काम नजर आए। तो इसी तरह से मैंने चांदनी बार का सब्जेक्ट, एक बार मेरा एक दोस्त था जो मुझे बार में ले गया, मुझे पता नहीं लेडीज बियर बार है, तो वहां ले गया और उसने बार को जब मैंने देखा, मुझे लगा यार ये कैसा कल्चर है, यहाँ पे लोग लड़कियां डांस कर रहे हैं और लोग पैसे फेंक रहे हैं, तो वहां से जो आइडिया जनरेट हुआ मेरे से, तो वहां से ही मुझे लगा कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। तो बहुत तो लोगों को मैंने सब्जेक्ट सुनाया इसका, तो सब लोगों ने रिफ्यूज किया, बोला नहीं ये तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, या जिनको समझ में आया तो वो अश्लील बनाना चाहते थे, तो मैं अश्लील फिल्म नहीं बनाना चाहता था। मुझे लगा कि मैं अपने हिसाब से एक फिल्म बनाऊंगा बोल के, जिसके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी बोल के। तो तब जाके मैंने मिस्टर आर मोहन, जो मेरी पिक्चर गलती से त्रिशक्ति देखे हुए थे, तो उनको लगा कि मधुर ने ऐसा टेक्निकली काम अच्छा किया था पिक्चर में त्रिशक्ति में, तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया चांदनी बार का, और उन्होंने बोला बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं तुम्हारे साथ फिल्म बनाऊंगा। फिर मैंने एक रिसर्च किया, 6 महीने के ऊपर रिसर्च किया, बार में जाके लोगों से मिलके, बार बालों से मिलकर, वेटर से मिलकर, कस्टमर से मिलकर, तो काफी एक रिसर्च करके 6-8 महीने में मैंने उसकी स्क्रिप्ट की राइटरों के साथ बैठकर उसको डाला, और उनको लगा कि पिक्चर में स्पार्क है और ये बन सकती अच्छी पिक्चर, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मधुर मैं बनाऊंगा। और तब्बू जी उनके साथ काम कर चुकी थी सजाए काला पानी पिक्चर में, तो मैंने उनको बोला तब्बू अगर होगी तो अच्छा रहेगा पिक्चर में, तो मैं और आरमोन साहब तब्बू को जाके मिले और हमने उनको नरेट किया, और तब्बू को बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट आइडिया, और उसके बाद ये पिक्चर मुकम्मल हुई। मुझे लगा कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि मेरा दूसरा चांस था, अगर ये पिक्चर नहीं चलती तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता। और जब मैं चांदनी बार बना था 1999-2000 में, तो जब म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो बड़ी पीक पे थी, और बिना गाने के तो पिक्चर ही नहीं बनती थी, और आइटम गाना तो एकदम पीक पे था वो टाइम पे, तो लेकिन मैंने मेरे प्रोड्यूसर को कन्विंस किया कि मैं बोला इसमें मैं कोई गाना नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि इस पिक्चर से, गाना आने से पिक्चर का नरेशन जो है इसका बहुत ही कमजोर पड़ेगा, और मुझे लगा कि 6 महीने जो बार में रिसर्च किए, तो मैंने हमेशा फिल्मी गाने सुने थे, तो इतना जहन में था मेरा कि मुझे लगा कि रियलिस्टिक गाना होने में ही बेटर होगी, तो इस पिक्चर की जो मोल्डिंग है वो भी रियलिस्टिक लगेगी। तो इसलिए हमने कोई गाना या कोई आइटम सॉन्ग, अगर चांदनी बार मेरे ख्याल से ऐसी जगह थी जिसके अंदर आप 5 आइटम गाना भी डालते तो कम पड़ता, हर लड़की के आइटम गाने भी डांस कर रही, लेकिन मैंने रियलिस्टिक गाना रखा जो पिक्चर के पुराने जो गाने होते हैं जानबूझ के रखा, और एक जर्नी दिखाई थी 1985 से 2000 तक, तो मैंने उस हिसाब से ईयर वाइज ईयर मैंने दिखाया कि गाने चेंज भी होते हैं, एम्बियंस चेंज होता है, सेट को रेनोवेट किया गया, तो हमने वो डिसीजन लिया, और मैं इस बारे में मेरे प्रोड्यूसर को भी सहयोग दूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस बारे में।
0: ये तो थी फिल्म चांदनी बार की बातें, सिर्फ यही नहीं बल्कि मधुर भंडारकर की फिल्म पेज 3 भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी गई। आपको भी अच्छी लगी थी ना ये फिल्म?

इस फिल्म पेज थ्री को बहुत ही रीजनेबल बजट में नए कलाकारों को लेकर बहुत ही कम समय में मधुर भंडारकर ने बना लिया। इससे जुड़ी कुछ बातें भी उनसे सुनेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि मधुर भंडारकर की एक और फिल्म थी आन, इसे भी डायरेक्ट उन्होंने ही किया था, लेकिन फिल्म के निर्माता फिरोज नडियाडवाला से उनके कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने तकरीबन कंप्लीशन पर ही ये फिल्म छोड़ दी, इसीलिए क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं है। बहरहाल आइए सुनते हैं फिल्म आन का गाना।

0: हाँ तो मधुर जी अब पलटाइए पेज थ्री।
1: पेज थ्री एक ऐसी फिल्म थी कि लोगों ने लगा कि ये किस तरह की फिल्म है और पता नहीं लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एक पेज थ्री टाइटल ही बहुत ही अलग टाइटल था और पिक्चर में कोई फेस वैल्यू नहीं था। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर हमारे टीम ने पूछा उसको स्क्रीन प्ले डायलॉग में इसको ढहा भरा से और इस तरह से उसको हमने प्रेजेंट किया, तो उस बात की खुशी हुई कि पिक्चर चली बोल के। वो पेज थ्री का आइडिया आया था जब मैं कहीं पार्टीज में गया, जैसे पेज थ्री पार्टीज कहते हैं, और कहीं अलग अलग मुझे लगा कि अलग अलग प्रकार के लोग एक पार्टी में आते, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड से हो, फिल्म वर्ल्ड से, एड वर्ल्ड से हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, तो एक छत के नीचे आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। जब मैं ऑब्जर्व करता था, मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ जैसे लोग कहते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो मुझे लगा कि इस पर फिल्म बन सकती है। तो मुझे पहले लगा कि एक ओवरनाइट सब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें रात को पार्टी चालू होती सवेरे खत्म होती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतने कैरेक्टर्स एक रात में मैं नहीं दिखा पाऊंगा और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया था पिक्चर, कि ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे, कोई सोशलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे। मुझे फिर एक लगा कि जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अच्छा रहेगा, तो इसलिए एक जर्नलिस्ट ऐसी रखी जो नई है बीट पे और नई तरह से काम शुरू किया है, तो ज्यादा मंझी हुई नहीं है वो, तो उस तरह से उसकी जर्नी हमने दिखाई है। खास घटना तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ऐसे पेज थ्री में इंसिडेंट्स मैंने देखे पार्टी में कि किस तरह से सुपरफिशियल लोग, किस तरह से एक प्लास्टिक वर्ल्ड हम कहते हैं जैसे डिपिक्ट कहते हैं, कि वो आते हैं वहां पे, माने चेहरे के पीछे हर इंसान की कहानी होती है, हर इंसान का एक जज्बात होता है
2: जी।
1: तो मुझे लगा कि ये पिक्चर की स्टोरी अगर बताई जाए तो बहुत बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट था ये
2: जी।

0: लेकिन मुझे लगा कि रिस्क लेके लोगों ने मुझे कहा चलो भाई तुम फिल्म बनाना चाहते हो ठीक है, लेकिन कम से कम टाइटल तो चेंज करो, ये पेज 3 समझ में किसको आएगा। लोग बहुत कहीं लोगों ने कहा कि मर्डर मिस्ट्री है,
1: जी
0: कोई फ्लैट नंबर है, क्या है ये,
1: जी
0: समझ में नहीं आ रहा पिक्चर। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कि मैं उस टाइटल से सीमित था कि पेज 3 होना चाहिए। मैं मेरे ख्याल से कोई भी एक पिक्चर चलती वो क्रेडिट पूरा डायरेक्टर को लेना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से पूरे टीम ने के मेहनत की है, प्रोड्यूसर ने मेहनत की है, और मेरे राइटरों ने मेहनत की है, म्यूजिक डायरेक्टर ने मेहनत की, राजू सिंह बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर बहुत अच्छा उसने किया, उसने मेहनत की, तो सब लोग ने की मेहनत।
1: हाँ।

दोस्तों, मधुर भंडारकर की बातों को सुनने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि उन्होंने फिल्मों में जो भी सब्जेक्ट रखे हैं, जो भी उठाए हैं, जो समस्याएं दिखाई हैं, वो सब उनकी जिंदगी के आसपास घटने वाली चीजों को ही उन्होंने फिल्मों में उतारा है। उन्होंने कहीं कहा है कि मैं समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। पेज थ्री उन्होंने बनाई सन 2005 में, कॉर्पोरेट बनाई 2006 में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेकर, ट्रैफिक सिग्नल बनाई सन 2007 में, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, 2008 में फैशन वर्ल्ड को लेकर उन्होंने एक रियलिस्टिक फिल्म दिखाने की कोशिश की, और फिर जेल की जिंदगी पर बनी सन 2009 में जेल। तो एक बहुत ही रियलिस्टिक कोशिश करते हैं मधुर भंडारकर अपनी फिल्मों के जरिए समाज को ये दिखाने की कि उसके आसपास, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये भी देख।

सामाजिक सरोकारों को देखकर, जानकर, महसूस करके उसे रुपहले पर्दे पर प्रस्तुत करने में माहिर मधुर भंडारकर की दो फिल्मों का जिक्र यहां जरूरी करना हो जाता है। एक तो दिल तो बच्चा है जी, इसी कड़ी में एक और फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हीरो।

0: जब हम बात मधुर भंडारकर की कर रहे हैं तो ये जिक्र भी जरूरी है, यानी कहना चाहिए कि लीक से हटकर एक अलग सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने वाले इस निर्देशक की हीरोइन के बाद कौन सी फिल्म आई तो तुरंत नाम याद आता है, कैलेंडर गर्ल्स। इस प्रतिभावान निर्देशक को भारत सरकार ने भी सराहा, उनकी प्रतिभा को नवाजा पद्मश्री देकर सन 2016 में। तो दोस्तों ये था फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम, रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

आइए सुनते हैं छाया गीत। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, कहते हैं जब विचारों की दौड़ लगती है तब शब्द आजाद परिंदों की तरह अपनी बनी बनाई तमाम बंदिशों को तोड़ देना चाहता है। ठीक वैसे ही मेरा ये बंजारा मन, या यूं कहूं बंजारापन, कहां चैन से सो पाता है भला। जीवन की कठोर यात्रा में खुद को ढूंढ रहा होता है एक बंजारे की तरह, इधर उधर तलाश रहा होता है अपना ठौर ठिकाना आजाद पंछी की तरह। बेहद मुश्किल है बंजारा मिजाजी, ये बंजारापन। गुलजार साहब तो कहते हैं रात, चांद और मैं तीनों ही बंजारे हैं।

कहाँ होता है बंजारों का कोई घर या अपना शहर। मुसाफिर होते हैं, पीठ पर बिछौना साथ लिए घूमते हैं इधर उधर। जंगल संस्कृति के लोग, नदी सभ्यता से जैसे कोई नाता नहीं। बस ऐसे ही मैं और मेरा बंजारा मन। जिंदगी में जिंदगी ज्यादा चाहता है, सजावट कम। धूप और हवा चाहता है, पर्दे कम। सार्थकता चाहता है, फर्नीचर कम। जीवन भर खुद को ढोया, खुद से कभी ना हारी हूं मैं। हाँ, एक बंजारा ही हूं मैं। हाँ, एक बंजारा ही हूं मैं।

जावेद अख्तर साहब अपनी एक नज्म में लिखते हैं, मैं बंजारा वक्त के कितने शहरों से गुजरा हूं, लेकिन वक्त के इस एक शहर से जाते जाते मुड़ के देख रहा हूं। सोच रहा हूं तुमसे मेरा ये नाता भी टूट रहा है। तुमने मुझको छोड़ा था जिस शहर में आकर, वक्त का अब वो शहर भी मुझसे छूट रहा है। वो सारे दिन जिनके कंधे पर सोती हैं अब भी तुम्हारी जुल्फ की खुशबू, सारे लम्हे जिनके माथे पर रोशन अब भी तुम्हारे लम्स का टीका, नम आंखों से गुमसुम मुझको देख रहे हैं, मुझको देख रहे हैं।

एक ओढ़ी हुई जिंदगी को छोड़कर अक्सर तन मन और जीवन बंजारा बन जाता है। देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं बंजारे ही तो हैं, कोई काम की तलाश में, कोई घर की तलाश में और कोई खुद की तलाश में भटक ही तो रहा है। जीवन की इस कठोर यात्रा में भूखा प्यासा दर दर भटकता हुआ प्यार और सुकून का सहारा ढूंढ रहा होता है। ये बंजारा।

आवारापन, बंजारापन, न जाने कहां कहां भटक आता है निरंकुश होकर। रात्रि की निस्तब्धता में घर के कोने से लेकर मन के आकाश तक बेधड़क और निडर होकर। किसी ने क्या खूब लिखा है, आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, हर दम हर पल बेचैनी है, कौन बला है सीने में। जाने ये कैसी आग लगी है, इसमें धुआं न चिंगारी, हो न हो इस बार कोई खाब जला है सीने में, आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, एक खला है सीने में।

सामिन, वक्त वक्त की बात है। वक्त का सफाक बहाव जिंदगी को नित नए सूरतों से दोचार करता है। कभी सूरत खुशगवार होती है तो कभी तकलीफ दे। कभी कभी मन स्वयं को अधूरा और उबाऊ महसूस करता है और कभी ये फक्कड़ मन दुनिया के शीर्ष पर जा पहुंच जाता है। और ऐसे में जब आपका ये आवारा मन समुद्र की लहरों के साथ अटखेलियां करने लगता हो तो उसी पल नाव की डोरी उतार फेंके। हाँ, हवाओं को पकड़ें, खोज करें, सपने देखें और उस सुरक्षित बंदरगाह से दूर, बहुत दूर दूर कहीं चले जाएं। किसी ने सच ही तो कहा है, थोड़ी सी आवारगी भी जरूरी है जिंदगी में। थोड़ी सी आवारगी भी जरूरी है जिंदगी में। कैद में रहकर परिंदे अक्सर उड़ना भूल जाते हैं।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
3: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
2: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
4: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
2: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।